0: और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला न मिल सके तो कोई चीज रहन बाकब्जा रखकर कर्ज ले लो, और अगर तुम में से कोई दूसरे को अमीन समझे यानी रहन के बगैर कर्ज दे दे तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे, और अल्लाह से जो उसका परवरदिगार है डरे, और देखना शहादत को मत छुपाना, जो उसको छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार होगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो और छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फिर वो जिसे चाहे मग़फ़िरत करे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते ही, और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते, और वो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया, ऐ परवरदिगार हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है।
1: ला युकल्लिफुल्लाह

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

अला महाराजा नासिर अब्बास चयो आहे त काफ़ी मामला हल थी विया आहिनि, नंढे नंढनि ॻाल्हियुनि ते इख़्तिलाफ़ हो। पीटीआई बानी सां मुलाकात ऐं ज़ाती फालिज ताईं पहुच वारनि मामले ते बि डेडलॉक आहे। दहशतगर्दीअ वारे मामले ते नेशनल एक्शन प्लान जे हवाले सां हुननि जा ख़र्चा वाह थी सघे थो। अॼु ॻाल्हियुनि जो वधीक हिकु दौर थिए, पर हुननि साफ़ साफ़ चई छॾियो आहे त हिन वक़्तु पीटीआई बानी सां मुलाक़ात जे पोज़ीशन में न आहिनि।

पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर है तो लॉन्ग मार्च तय आए हर हाल में थी वो परमन होंद लॉन्ग मार्च जो जवाब इमरजेंसी या गवर्नर राज ना है लॉन्ग मार्च के ओट में अड़ा कदम न थियन घुर्जन जैसा आवाम में कावड़ जन्म वे गाल दौर इतफाक ना थी सको पर गाल दरवाजा खुलल है।

ताईं लांग मार्च जे पहिरें मलर मरहलो शुरू करण जो ऐलान सोहेल आफरीदीअ चयो त अक्टूबर ते खैबराबाद पहुची ईंदड़ हिकमत अमलीअ जो ऐलान कंदासीं। सोहेल आफरीदीअ जी वज़ीर अला हाउस पेशावर में पीटीआई अॻवाननि जुनेद अकबर ऐं आतिफ़ ख़ान सां लांग मार्च बाबति मुशावरत।

0: आपको मालूम है कि छाती का कैंसर
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में A product by Aksa Cosmetics Pakistan
3: Finally अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
5: अच्छा, variants सबके different, लेकिन choice सबकी है.

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
4: मेरे पापा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे माफ कर देना।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: छोरो में तालिमी साल 2027 जी बैचलर डिग्री प्रोग्राम में प्री एंट्री टेस्ट वरती पई वे पेरे मरहले में टेस्ट में सिंध के मुख्तलिफ जिले में 8,000 का उम्मीदवार हिस्सों वी रहा है। बैचलर डिग्री प्रोग्राम ला 19,416 मास्टर ए बी एस टिन साल 3,095 उम्मीदवार रजिस्टर कराई। सकरंड में जवाबदार नींगर के नशो डई मुबैना बदफेली जो निशानो बणाए फिटो कर छो। खानजादा पाड़े के रहवास नींगर के बदफेली जो निशानो बणाए 0 पॉइंट वट फिटो वो वारसन है तो नींगर रात का गुम हो मानुन नींगर के खी आया बुधायो तो 0 पॉइंट वटा मिलो है। नींगर से तशद्दुद भी थियल है जवाबदार गिरफ्तार कर इंसाफ फराम कयो वजे।
1: आपको मालूम है कि छाती का कैंसर एक खतरनाक और जानलेवा मर्ज है और पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: अरे नहीं खुश आई बीर ऑन की स्किन हर इमेज लाइक छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चार अंजू खूबियो आई कोच कैसे फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जिंदगी के लॉक करे आई चार अंजू खूबियो जल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट उन संगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: वधीक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ जिए दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत यकजहती का पैगाम दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत यकजहती

शौक से पता करते हैं लोगों के दिलों को, शौक से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। Assalamualaikum, you are tuning into Jio Radio FM 88 और साथ ही साथ प्यारे से चौड़ा मीठी सी आवाज, मासूम से दिल सूख सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज मुझे रहते हैं आज जी रुखसार सिंध की आवाज। हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो गाइस जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है, पूरी पूरी एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हो सिंध की गुलजार है। पासे बाय सुपर वाइट बाय अक्सर कस्मरिक जो कि आप सुनते हैं।

इसके अलावा वो लोग जो इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे बस में, ट्रक में, रिक्शे में, कार में, बाइक में, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट अलग अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बहुत जगह बाकी रीति मौजूद है, तो कहीं भी बाकी रीति मतलब वो तमाम तो लोग जो लोग यहाँ सल रहे हैं उनको कहेंगे मैंने मैंने वहाँ पर रिटर्न से बताई वहाँ पर भेजी चाहिए। उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। और जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा है, कुछ बड़े, कुछ बड़ा, कुछ नहीं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में

ओके जी, प्रोग्राम में हम चलते हैं आगे एंड इसके साथ साथ जी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरीके कार से। तो आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, इसके आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज @facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर आपको मिलती है लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग। जी लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर भी आपको मिलती है लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग। तो उसके नीचे आप कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं एंड कमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ साथ उस ऑडियो स्ट्रीमिंग को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे फर्दर अपने पेजेस, प्रोफाइल्स और ग्रुप्स में, सो दैट हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए और उनको बता पाए कि उनकी जिंदगी गुलजार है और वो कैसे है सॉफ्ट सुपर वाइट के बहुत अच्छे प्रोडक्ट और सुपर वाइट के ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो कि आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, आपको खूबसूरत बनाने के लिए बनाए गए हैं। तो अभी तक अगर आपने सुपर वाइट के प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं तो बहुत बड़ा नुकसान किया है अपना। तो अगर आप अपना अभी तक नुकसान कर रहे हैं तो नुकसान को फायदे में तब्दील करें और सुपर वाइट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करें। तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं और आप लोगों के लिए लेकर आते हैं।

अभिजी सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स और सुपर वाइट के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? सुपर वाइट के प्रोडक्ट हैं विटामिन सी फेस वॉश और फेस वॉशेस के रेंज के बारे में अगर बताया जाए तो सुपर वाइट का विटामिन सी फेस वॉश आता है, जो सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश आता है। इसके अलावा सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश आता है, सुपर वाइट का टर्मेरिक फेस वॉश आता है, सुपर वाइट का राइस कोलेजन फेस वॉश आता है, ठीक है। तो ये फेस वॉशेस आते हैं। इसके अलावा जी इनकी क्रीम्स भी आती हैं, विटामिन सी की ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम आती है जी, और सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइट की एंटी फ्रेकल क्रीम आती है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सुपर वाइट की और फ्री एक्नी क्रीम भी आती है उन तमाम तो लोगों के लिए जिनके फेस के ऊपर एक्नी रहती है और एक्नी खत्म नहीं होती है। तो एक्नी खत्म होगी इसके इस्तेमाल से। इसके अलावा जी सुपर वाइट का वाइस कोलेजन ब्यूटी सोप भी आता है जी, इनके बूस्टर्स भी आते हैं, सीरम्स भी आते हैं जो कि आप क्रीम में ऐड करके क्रीम के रिजल्ट को डबल इनहेंस कर सकते हैं। सो गाना हमारा ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है, सो हम चलेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ भी। एंड जब हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग हमारे पास होगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, जिसको हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ साथ आगे चलेंगे। और सुपर वाइट की राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम भी आती है जो कि आपको देती है ग्लास स्किन।

0: 9:30 a.m. This time check. It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.
3: I'm beating on the skin. Hard image like that. Damage? It does skin kick ayo. Out. But you kiye. To kick up Super White Dry Collagen Beauty Cream. Jehme aahin, chaur anju khubiyo. I koji kaise formulation. Jo jind ke restore kare, unhe jind mein ki lock kare. I chaur anju khubiyo. Jind ma fine lines and jhuran ki ghat kar. I wrinkles ki ghat kare. Sif trim nihan mein. Jind ke badaye, naram, mulayam and bright. Unhe sa zarurat super.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे मैं खुश्क बेरोनो की स्किन और इमेज छा डैमेज डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चारि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चामरनि जूं खूबियूं जल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में, जल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती, हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM
3: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। 1

0: एड्रेस अल निसा मेडिकल सेंटर नद सिटी चौक सचल कॉलोनी लाड़काणो। टाइम रोजाना शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं आचर ते मंझंदि जो 12 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। राब्ते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी मोबाइल नंबर 03422241869। छा अव्हां खे या अव्हां जे कंहिं बि मिट माइट खे छिन, गले जो गुदूद, पिते जी पथरी, थायराइड, मोका, पेट ऐं छातीअ जूं बीमारियूं या कंहिं बि ऑपरेशन जो मसइलो आहे त हाणे अव्हां खे फिक्र करणु न घुर्जे। मशहूर ऐं तजुर्बेकार कंसल्टेंट जनरल सर्जन डॉक्टर पिरह मेमण MBBS FCPS हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर में मरीज़नि जो मुआइनो ऐं इलाज करे रही आहे। एड्रेस तैमूर हेल्थ कॉम्प्लेक्स, साम्हूं आर्ट्स काउंसिल, सचल कॉलोनी, लाड़काणो। टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं। आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं। राब्ते ऐं मालूमात जे लाइ 07447524474। डॉक्टर पिरह मेमण, अव्हां जी सिहत असांजी ज़िमेवारी।
1: अनीसा खैर तो आहे, मंडकाए तो घुमी, धकु लॻो अथई छा?
2: हाओ यार अब्दुल्ला, एक्सीडेंट में जंघ जो हॾो भॼी पियो आहे। तोखे त ख़बर आहे ग़रीबी हाल आहे, पैसा बि कोन्हनि के।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको और मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरीकाकार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/GFM88 की पेज के ऊपर आपको मिल रही है लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग. जिंदगी गुलजार है कि स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स. और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट है उन पे हम जरा रोशनी डालेंगे इसके.

अच्छा जी, साथ साथ हम कॉमेंट्स की तरफ चलते हैं तो बहुत सारे कॉमेंट्स आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. सो कॉमेंट्स मुझे रिसीव हो गई हैं. जहान खान मलिक का कॉमेंट आया है जी, शो इज बेस्ट. इसके अलावा जी हमने कॉमेंट किया है अबडे जी कैसे हैं, थैंक यू अबडे जी कैसे, वेलकम कहते हैं जी. अली रजा हमें सुन रहे हैं और कॉमेंट कर रहे हैं जी, थैंक यू. अब्बासी के साथ जी हमने कॉमेंट किया है, थैंक यू सो मच. फराज राहुल अली खोसू हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. और इसके

0: song song ke saath saath hum le rahe hain aap logon ki bahut sari live calls and next caller jo hai line pe maujood honge. Hello. Hello, assalam alaikum.
1: Alaikum assalam.
0: Ji, kaun baat kar rahi hain, kahan se? Zaibun Nisa, aapki call drop ho gayi thi. Zaibun Nisa, mujhe ye bataiye, program sunti hain?
1: Ji.
0: Thoda sa loudly baat kare, program sunti hain?
1: हाँ
0: हाँ ओके okay, प्रोग्राम सुनती हैं, कौन सा प्रोग्राम है?
1: जिंदगी
0: गुजार है
1: और
0: सुपर वाई छुआओ. अच्छा मुझे बताओ कि सुपर वाई के प्रोडक्ट यूज किए हैं कभी?
1: मैं अभी छोटी
0: हूँ. अभी हेलो
1: मैं छोटी हूँ अभी.
0: कितनी छोटी हैं?
1: 13 साल की हैं.
0: तो कोई बात नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सुपर वाइट के, वो आप लगा सकती हैं, यूज कर सकती हैं. ज़ैबुन निसा
1: जी जी
0: ओके मुझे बताओ और कुछ कहना है?
1: नहीं नहीं
0: चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो. थैंक यू अल्लाह हाफिज जी. 03000131488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, और कॉल करने के साथ साथ आप लोग सुपर वाई के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं. अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो वेरी बैड, करना चाहिए आपको. और इसके अलावा सुपर वाई के बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम भी आती है, सुपर वाई की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जो कि कोरियन फॉर्मूला है कोरियन स्किन को बनाने के लिए. तो वो तमाम तो लोग, वो तमाम तो लड़कियां, वो तमाम तो खवातीन जिनका ड्रीम है कि हमारी रियाज स्किन हो, कोरियन स्किन हो, सो वो यूज कर सकते हैं इसको. सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम को

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: ईंदड़ महीने सखर हैदराबाद मोटरवे M6 ठाहिण वारो कम शुरू करण जो ऐलान वफाकी वज़ीर अलीम ख़ान चयो आहे त 30 सालनि खां देरि जो शिकार मोटरवे जे तामीर शुरू थियण पई वञे M6 जहिड़े तारीख़ी मनसूबे खे अमली शिकिल ॾियण जो मौक़ो मिली रहियो आहे M6 मोटरवे सिंध समेत सॼे पाकिस्तान में वापारी सरगर्मियुनि खे हथी ॾियण हूंदो M6 मोटरवे मनसूबो सिंध ऐं पाकिस्तान जे तरक़ी लाइ अहम साबित थींदो केपीअ में सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाई 8 दहशतगर्द मारिजी विया DI खान में दहशतगर्दनि जी मौजूदगीअ जी कुझु इतलाह ते ऑपरेशन कयो वियो सिक्योरिटी फोर्सिस मूजिबि ऑपरेशन में मारिजी वियल फितरल खारिजनि जा 3 कमांडर बि शामिल आहिनि मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियार ऐं परॾेही करंसी हथ आई सिंध यूनिवर्सिटी जाम छोरो में तालीमी साल 2027 जे बैचलर डिग्री प्रोग्राम जी प्री एंट्री टेस्ट वरिती पई वञे पहिरें मरहले जी टेस्ट में सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां 8,000 खां वधीक उमेदवार हिसो वठी रहिया आहिनि बैचलर प्रोग्रामनि लाइ 19,416 मास्टर ऐं BS 3 सालनि लाइ 3,095 उमेदवार रजिस्ट्रेशन कराई सुबुह दुरो भरिसां वाह खे गुज़िरियल राति खां लॻल घारो बंदि न थी सघियो वाह खे घारे सबबि कमंद वण ऐं केलनि जे बाग़नि समेत ॿियो फसल पाणी हेठि अची वियो इलाइक़े वासियुनि पंहिंजे मदद पाण तहत राति खां वठी घारो बंदि करण जी कोशिश में रुधल सकरण में जवाबदार नींगर खे नशो ॾियण बैदि मुबैना बदफ़ैली जो निशानो बणाए फिटो करे विया खानज़ादा पाड़े जे रहवासी नींगर खे बदफ़ैलीअ जो निशानो बणाए 0.8 वटि फिटो कयो वियो वारसनि चयो आहे त नींगर राति खां गुम हो माण्हू नींगर खे खणी आया ऐं ॿुधायो त हू 0.8 वटां मिलियो आहे नींगर ते तशदुद बि थियल आहे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Oil Free Beauty Cream. Munfarid aur jadeed formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.

0: GA FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
3: सुपर वाइट।

0: छा अवां जो गाड़ी खरीद करण जो इरादो आहे
1: या पंहिंजी पुराणी गाड़ी विकणण चाहियो था त पोइ अचो
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हां तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूं, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूं सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
2: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
4: सुपर वाइट।
5: हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के साथ साथ हम आगे चलते हैं एंड हम कॉमेंट्स की तरफ भी आते हैं, कॉल्स की तरफ भी आते हैं और सुपर वाइट की तरफ भी आते हैं. तो सुपर वाइट और सुपर वाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि आप लोग यूज कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो वेरी बैड, जल्दी से कर लें. और सुपर वाइट के और भी बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं. मतलब क्या ऐसा नहीं है जो सुपर वाइट वाले ने ना बनाया. और पेट्रोलियम जली और हल्दी की जो है ब्लीच क्रीम इनकी आती है. इसके अलावा जी इनकी पेट्रोलियम जली बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर्स में आती है. और अब सर्दियों की जो एक बहुत अहम ज़रूरत है ना हर इंसान की, वो है जी पेट्रोलियम जली, जो कि आप लोग बाय करने जाएंगे. तो इस सीजन आपने करना ये है कि पेट्रोलियम जली अगर लेनी है तो वो आपने लेनी है जी सुपर वाइट वालों की. कोकाओ बटर के फ्लेवर में आती है जी सुपर वाइट की पेट्रोलियम जली. इसके अलावा सुपर वाइट की पेट्रोलियम जली लेमन में आती है, लेमन की फ्रेग्रेंस और लेमन की खूबियों के साथ. इसके अलावा जी पिंक में भी आती है जी सुपर वाइट पेट्रोलियम जली. और ये जो पेट्रोलियम जली डिफरेंट अलग अलग फ्लेवर्स में आपको मिल रही है, बहुत कमाल की पेट्रोलियम जली है. इसको यूज कर सकते हैं आप इस सीजन में, ठीक है जी. तो ये बड़ी कमाल की स्किन आपकी बना देगी. अगर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ड्राइनेस का जो है सामना करना पड़ता है, जिन लोगों की स्किन खास तौर पर बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तो सर्दियां आने के बाद उनकी स्किन मजीद और ज्यादा ड्राई होने लग जाती है. तो आप लोग यूज करेंगे. अच्छा, जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनके लिए खास तौर पर सुपर वाइट वालों ने सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम बना दी है. पहले ही 3 दिन में विजिबल रिजल्ट देखेंगे इसके इस्तेमाल से, ठीक है. इसका फायदा यह है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन को फेयर करती है. डार्क कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के साथ साथ करती यह है कि आपकी स्किन से पिंपल्स को खत्म करती है मुकम्मल तौर पे. और पिंपल्स को खत्म करने के बाद करती क्या है, करती यह है कि आपकी स्किन को फ्लॉलेस और खूबसूरत बनाती है. तो जब आप आपकी स्किन फ्लॉलेस और खूबसूरत लगती है तो आपकी स्किन बेदाग हो जाती है. और आपकी स्किन इस कदर खूबसूरत लगती है कि स्किन खूबसूरत होने के बाद, चेहरा खूबसूरत होने के बाद एक अलग सी अट्रैक्शन आपकी जो है वो लोगों को अपनी तरफ खींचती है. और यही वजह होती है कि सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स आपको खूबसूरत बनाते हैं. अच्छा, सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम वो तमाम तर लोग यूज कर सकते हैं जिनकी स्किन ऑयली है, ठीक है. स्किन ऑयली होने के बाद आपको ऐसी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए जो कि आपकी स्किन टाइप से जो है रिलेटेड हो, आपकी स्किन टाइप को जो है ना मतलब कि आपकी स्किन टाइप के मुताबिक आपकी

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

back once again. Awesome Radio sa nagigulzahan here, sponsored by Super White Products by Exa Cosmetics or Super White K. Super Sibi Upar ke products jin ke taamon se aap ye program sun rahe hain, enjoy kar rahe hain. And iske ilawa ji aap log mujhe join kar rahe hain program mein teen tarike kar se call kar rahe hain 03000113488. Iske ilawa aap log mujhe 8881 pe messages kar sakte hain, comment kar sakte hain jo hamare Facebook pages ke upar. तो फेसबुक पेजेस पे आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं. इसके अलावा जी सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जिनमें आप लोग इसका फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं. और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने लेनी है, प्लस सुपर वाइट की ऑयल फ्री एक्नी क्रीम आप लोगों ने लेनी है, और सुपर वाइट का ऑयल फ्री सीरम आप लोगों ने लेना है. ये तीन चीजें और चौथी चीज इसके साथ ये है कि सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश आप लोगों ने लेना है. ठीक है, ये जो है पांच चीजें आपने बाय करनी है. एंड बाय करने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि मिक्स करना है आपस में फेस वॉश के अलावा सारी चीजों को आपस में मिक्स करना है. किसको? सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट एक्नी ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम. ठीक है, एक जार में आपको मिलेगी जो एक्नी वाली है वो ट्यूब की पैकेजिंग में आपको मिलेगी, प्लस इसका सिरम. और इनको आपस में मिक्स करना है. मेक श्योर कि जब आप मिक्स कर रहे हो तीनों चीजों को तो जो आपका जार है वो ग्लास का होना चाहिए. ठीक है, ग्लास का जार होगा ज्यादा इफेक्टिव होगा. और ग्लास के जार में इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको स्टोर कर लेना है. स्टोर करने के बाद इसको रोज रात को सोने से पहले अप्लाई करना है. अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आप लोगों ने फेस को वॉश करना है सुपर वाइट के ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से. उसके बाद फिर आपने क्रीम को अप्लाई करना है फेस को ड्राई करने के बाद. ठीक है, मेक श्योर कि आपका फेस गीला नहीं हो. गीले फेस के ऊपर लगाएंगे रिजल्ट स्लो मिलेगा. ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है. एंड दिन में जितनी भी बार फेस को वॉश करें आप सुपर वाइट के ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं. सो डैट आपको इसके बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे पहले ही तीन दिन में. अच्छा, साथ साथ मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं. यारी मदद सदाकत हुसैन मीरानी साहब, बच्चल शाह मीरानी सखर से हमें सुन रहे हैं. सुपर वाइट शो में पहली मर्तबा शामिल हो रहा हूँ. उम्मीद है वेलकम शो में कहेंगे. जी वेलकम कहेंगे आपको शो में. सुपर वाइट क्रीम का छोटा बाजी हेल्पलाइन का नंबर बताएं. हेल्पलाइन का नंबर आपको बताएंगे जी. इसके अलावा अदि बहन रुखसार एसएमएस में नेम लिखा था सागर नियाज हुसैन चांडियो. अच्छा, नेम आपका पहुंचा नहीं है मेरे ख्याल से, मिसिंग पार्ट आया आपका मैसेज. तो थैंक यू सो मच सागर नियाज हुसैन चांडियो के आपने हमें मैसेज किया. इसके अलावा जी

शाम के साथ साथ आगे चलेंगे हम. और जी कॉल्स में आप लोगों की लेना स्टार्ट कर देती हूँ या ले लेती हूँ और हमारी कॉल्स कभी कभार हैंग हो जाती हैं. सो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको हम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन क्या कोई बात नहीं, हम कॉल्स करेंगे 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स. ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए जो टेलीफोन लाइन्स हैं वो हमने कर दी हैं ओपन, आप लोग कॉल कर सकते हैं. और साथ साथ कॉमेंट्स की तरफ मैं मूव करूँगी, तो बहुत सारे कॉमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त आप लोगों के. सो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जो इस वक्त ऑडियो स्ट्रीमिंग लाइव है उसको आप शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकते हैं. नज़ीर खोसन ने कॉमेंट किया है बलोचिस्तान से, तलहा अंजुम का कोई सॉन्ग प्ले करें, तलहा अंजुम का अफसाने प्ले करें, या चले कोई अच्छा सा प्ले करते हैं, प्ले करेंगे. ठीक है, इसके अलावा जी कहाँ गए कमेंट, मिर्जा की लहरी बालान शाह बलोचिस्तान से हमें सुन रहे हैं जी. वेलकम टू द शो, बलोचिस्तान वाले बहुत ज्यादा शो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वेलकम टू द शो. और इसके अलावा जी और क्या करेंगे हम, और ये करेंगे हम कि मैं सोच रही हूँ हमें मूव करना चाहिए दूसरे गाने की तरफ. एंड अनदर सॉन्ग इज बाय मुस्तफा जाहिद, इसको सुनते हैं और आगे

0: जी कॉलर मेरे से लाइन पे मौजूद होंगे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कैसे भाई, ठीक ठाक? पहले से तो कॉल कर रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वो चक्कर कॉल किया, ओके, केड़ो केड़ो प्रोग्राम बुटो था?
1: प्रोग्राम जिंदगी गुलजार,
0: स्पॉन्सर्ड बाय
1: जी जी जी जी कॉस्मेटिक एंड सुपर वाइट
0: कॉस्मेटिक, सुपर वाइट प्रोडक्ट, वेरी गुड। तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट कब इस्तेमाल कर रहे हैं?
1: जी जी बिल्कुल,
0: कब इस्तेमाल कर रहे हैं? ओके, जरूर ले ले, और कुछ कहेंगे? ओके, ओके, आपको समझाते हैं जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स, और मुझे कल किसी ने रिक्वेस्ट की थी और मैंने एग्री भी किया था कि मैं प्ले करूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे दिमाग से निकल गया और मैं भूल

0: रिक्वेस्ट है वो भी हम प्ले करेंगे सीके जी, और 03000113488 के ऊपर एक और कॉलर एंटरटेन करने जा रहे हैं. हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कौन से?
1: आपको चले डॉक्टर लाजवाना से आपका प्यारा सुपर वाइट कॉस्मेटिक अच्छा.
0: सुपर वाइट कॉस्मेटिक, वेरी गुड. तो कब इस्तेमाल कर रहे हैं?
1: प्रोडक्ट इस्तेमाल हमने नहीं किया, वैसे प्रोग्राम आपका जबरदस्त सुन रहा हूँ हफ्ते के 7 दिन.
0: हफ्ते के सात दिन
1: ये आपका शो जबरदस्त है.
0: चले थैंक यू सो मच. और कुछ कहेंगे?
1: अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारे सदाई प्रोग्राम खंडा रहो. अल्लाह सदाई सलामत रखे. कुछ मानो चवंदा तो ये प्रोग्राम जिंदगी गुलदार बंद कर वाले, पर मैं ये प्रोग्राम तमाम बेहतरीन आए.
0: कौन कौन कह रहा है ये? मैंने तो नहीं सुना.
1: आपने नहीं सुना ना?
0: नहीं मैंने तो नहीं सुना.
1: इस अखबार प्रोग्राम में भी चवंदा बस छाप गए.
0: चले
1: प्रोग्राम तमाम बेहतरीन.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें. ओके जी, वेरी वेरी वेरी बैड. कितनी बुरी बात है. आपको क्या तकलीफ है? बड़ी बात है. गाना सुनते हैं थोड़ा सा, फिर एक और कॉल लेते हैं. सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बना रहे हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से, आला मयार और आला क्वालिटी के साथ.

अच्छा इसके अलावा जी एंड उजैफ कहते हैं कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करें. अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप वही हैं जिसका शक हमेशा सही और फैसला हमेशा गलत होता है. वही वाले तो नहीं है आप. आपको कमेंट पढ़ के मुझे फील हुआ. अली हसन ने हमें कमेंट किया है जी दवाज दादू से. ये मैं पहली दफा रीड कर रही हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग.

0: ओके कॉलर ही लाइन पे मेरे साथ. हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: मैं बाजी मोहम्मद आलिम कोट डीजी से.
0: कोट डीजी से बात करें, पहली दफा कॉल की है?
1: पहली दफा कॉल की है. अब
0: वेरी नाइस. मुझे बताएं कौन सा प्रोग्राम है ये?
1: जी
0: कौन सा प्रोग्राम सुन रहे हैं? कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? किस प्रोग्राम में कॉल की है?
1: बाजी मैंने आपका शो चल रहा है इसके लिए कॉल की.
0: क्या नाम है इसका?
1: मेरा नाम इसका नाम पता नहीं, पहले दफा कॉल किए.
0: मेरा नाम पता है?
1: आपका नाम पर नहीं पता.
0: मेरा नाम भी नहीं पता. अच्छा फिर क्या पता है? जो पता है वो बताएं.
1: आपको गाना सुनाऊंगा.
0: मुझे गाना सुनाएंगे? कौन सा गाना?
1: गाना सुनाऊंगा उर्दू.
0: उर्दू गाना कौन सा सुनाए तो सही ना, पता तो चले ना.
1: आप सुनाए ना एक उर्दू गाना.
0: अच्छा अभी आपने कहा मैं सुनाऊंगा तो मैंने कहा सुनाए.
1: मैं भी सुनाऊंगा. कौन सा सुनाऊंगा? सब गाने मुझे याद हैं.
0: चले आप छोड़े बस मैं आपको सुनाती हूँ, आप वो सुने फिर आप वो गाइएगा.
1: जी
0: ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. एक गाना सुनाएंगे और वो एक गाना सुना ना सके, खैर कोई बात नहीं, हम सुनाएंगे आपको एक गाना. एंड गाने बहुत सारे हैं मेरे पास. और मैं वही हूँ जो बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने देख के कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसमें से ही कौन सा ज्यादा अच्छा है. वो वाला प्ले होना चाहिए.

0: चमकदे सारे चंद तारे, चंद तारे।
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Moro,
4: Noshehro,
3: Mirpur Khas,
4: Larkana,
3: Sakhar,
4: Goonj Rahi Hai Har Jagah Par,
3: Sindh Ki Awaaz,
4: GA FM 88 Network.
5: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
6: ब्रॉट टू यू बाय
7: सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान

M6 मोटरवे ठाहिण लाइ 30 सालनि खां आसरा ॾींदड़ वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ईंदड़ महीने सखर हैदराबाद मोटरवे M6 ठाहिण वारो कमु शुरू करण जो ऐलान. वफ़ाक़ी वज़ीर अलीम ख़ान चयो आहे त 30 सालनि खां देरि जो शिकार मोटरवे जे तामीर शुरू थियण पई वञे. M6 जहिड़े तारीख़ी मनसूबे खे अमली शिकिल ॾियण जो मौक़ो मिली रहियो आहे. M6 मोटरवे सिंध समेत सॼे पाकिस्तान में वापारी सरगर्मियुनि खे हथी ॾींदो. M6 मोटरवे मनसूबो सिंध ऐं पाकिस्तान जे तरक़ी लाइ अहम साबित थींदो.

गुजेतला ते ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस मूजिब ऑपरेशन में मारजी वियल फितनल खार जा टे कमांडर बि शामिल। मारजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियार हथ ऐं परॾेही करण सथ आई।

0: महाराज जे टिन जहाज़नि खे निशानो बणायो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी आपनेर में खुलियल हुजण जी दावा बावजूद कार्रवाई जारी रही।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, Munfarid aur Jadeed Formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dinon mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
3: सचल की सरमस्त धरती,
2: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
3: GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है. तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम.
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी. एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है.
2: सुपर वाइट.
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा.
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेरापुर मादली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।

900 डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बड़ी शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेकर हाजिर खिदमत हो चुके हैं जनाब, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि खूबसूरती कैसे हासिल की जाती है। अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि हम जनाब जो है ना अपनी खूबसूरती के मामले थोड़ा सा चूजी हो जाते हैं, पिकी हो जाते हैं। उस सूरत हाल को देखते हुए या तो हम प्रोडक्ट्स की जाने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं या तो फिर हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट से दूर चले जाते हैं। ये दोनों ही सूरतें हो जाती है, लेकिन अगर आप भी थोड़े से पिकी हैं, थोड़े चूजी हैं, तो आप लोगों को इस चीज के बारे में ख्याल रखना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी स्किन के मुताबिक है भी या नहीं। क्योंकि जब हम अपनी स्किन को सही वाले प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं, सही प्रोडक्ट्स का इंतखाब नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है बदले में हमें यही मिलता है कि हमारी स्किन खराब हो जाती है। खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं, खूबसूरती के मामले में बेफिक्र रहना चाहते हैं, तो जनाब हमारे प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाएगा ना सिर्फ खूबसूरत होने के राज बल्कि खूबसूरतियों को मेंटेन कैसे रखा जाता है ये भी बताया जाएगा। प्रोग्राम में जनाब आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और आपके अगर खूबसूरती की बात चली रही है तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए मैं क्यों कहती हूँ कि भाई जरूरी है। क्योंकि जब हम अपने चेहरे के लिए अच्छे वाले प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर लेते हैं तो जाहिर बात है हमारी स्किन जो है वो खराब होने के चांसेस जो है ना

यहाँ पर हमने एंट्रियाँ मार ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियाँ मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियाँ बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियाँ बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है पूरी पूरे 3 बजे तक। हाँ जी जनाब, 2 घंटे हैं हमारे पास और इन 2 घंटों में आप फर्ज कर लीजिए हम कितनी ज्यादा वाली बातें करने वाले हैं। तो बिल्कुल जी, ढेर सारी बातें करेंगे आप लोगों के साथ और सुनाएंगे आप लोगों को मजे मजे के गाने और आप लोगों के साथ होंगे गपशप और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को बताते रहेंगे। और यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां, अमियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे मेरी वाले गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में बनेगी चटपटा मसाला। बिकॉज आली रे आली सिदर आली बोस, आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत से कलाम के साथ। एक बहुत प्यारा सा कलाम हमारी लिस्ट में लाइनअप है, तो कलाम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। सो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

बातें बहुत ही खूबसूरत सी नात हमने यहाँ पर सुनी और आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है सबसे पहले वो बता देते हैं। जनाब तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है यानी कि जो सवाल होने वाला है वो क्या होगा, तो जरा गौर से सुनिएगा। आज मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसका अगर जिस्म का कोई पार्ट कट भी जाता है तो वो दोबारा से जो है ना वो उग जाता है, दोबारा से वो जो हिस्सा है ना उसका मुकम्मल हो जाता है। जैसे अगर हम प्लांट को काट देते हैं तो वैसे ही प्लांट की जगह पर वहीं पर एक और शाख उग जाती ना, बिल्कुल वैसे ही वो कौन सा एनिमल है, कौन सा जानवर है जिसका अगर बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो वो दोबारा से उसे जो है ना वो उगा देता है। आज के प्रोग्राम का ये सवाल है, आपने क्या करना है इसका जवाब देना है। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जनाब जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहां पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। ओके, साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो वो भी जरूर शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। सुनने वाले लोगों को भी ना ये पता चले कि भाई आप लोग जो हैं वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके कितने ज्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के बारे में आप लोगों को बिल्कुल बताते रहेंगे। आप पोस्ट को लाइक और शेयर करना जो है ना वो मत छोड़िए, लाइक और शेयर करते जाइए। और साथ ही साथ अगर आप भी चाहते कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल होना चाहिए तो उसके लिए आपको नंबर्स बताए जाते ही प्रोग्राम के अंदर जो कि डायल करके 0301250970 3837 3893 8439 ही नंबर आए जिके तवां डायल करे, दुनिया जे केड़े भी कोने में मौजूद आ त तवां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल कराए सको था। सो बाबा तवां के सिटी का सके बुधो था, तवां जो के गोठ का ताल्लुक आ है हर जगह ते तवां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल करायो, तवां जे लाइ आसानी थी वेंदी, बस तवां वेंदा ई तवां परचेज करेंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश जी क्या क्या क्वालिटीज है वो आप लोगों को बिल्कुल बताती रहूंगी। आप टॉपिक को फॉलो कीजिए, मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसके जिस्म का कोई पार्ट अगर कट भी जाए तो वो दोबारा उसे उगा लेता है। इनका अलावा आपकी जी फीडबैक्स मुझे काफी सारे मौसूल हो चुके हैं। आप बस पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और यहाँ पर सबसे पहले चाचा खाले जुनेजो का कमेंट कहते हैं कि आयो खुश आयो बेटा सिद्रा, माँ सफा मजे में तामुदा की आयो, और कहते हैं गुड आफ्टरनून हो चुका है, गुड आफ्टरनून। और निजाम बेटी कादरी हमारे साथ है मटियारी से, आपने मुझे ज्वाइन किया, कहते हैं मेरे शॉप से आपका शो सुन रहे हैं बाजी, आज हमारी पसंद का सॉन्ग सुना दो मुमताज लाशारी का, माँ कोशिश क्या थी भात हमारा सबनी जो फरमाइश हलाइना से। अल्लाह डना भाई हमें कश्मीर से सुन रहे हैं, अल्लाह डना भाई को भी वेलकम हो गया। और साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद जमान भाई लिखते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय स्वीट बुआ जी, वेलकम टू यू माय स्वीट ब्रो। और निजाम भट्टी लिखते हैं कि दिल बहुत अनमोल होते हैं, यूं ही एक के हवाले नहीं करते, एक के हवाले नहीं करते मतलब एक इंसान के ना जो ओके ओके। और यहाँ पर हमारे साथ हैं जी एक और मैसेज मुलाजिम भाई का, वालेकुम अस्सलाम मुलाजिम भाई। और जैन अली लिखते हैं कि इश्क ने पकड़ा ना था गालिब अभी वेशद का रंग, रह गया था दिल में जो कुछ जोक खवारी। हाय हाय हाय हाय, ये आप लोग जो अपनी शायरियां भेजते हैं, लिखते हैं कि हदूदे इश्क के पैमाने नहीं होते, जो मुखलिस हो वो हर किसी के दीवाने नहीं होते, अल्लाह जाई बुदा
अच्छा फरवा हमारे साथी वाले को अस्सलाम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे अल्लाह सही तवा के खुश रखे थैंक यू वेरी मच तवा से सगट मौजूद है और जैन लिखते हैं कि फर्ज करो तुम कुछ ना हाँ जी फर्ज करो तुम कुछ ना पाओ अपना आप लुटा के फर्ज करो कोई मुकर ही जाए सच्ची कसम उठा के भी ऐसा होता है भाई आजकल के दौर में इट्स नॉर्मल और ये चीज मुझे लगता है नॉर्मल हो चुकी है दुनिया में लोग कसमें उठाते हैं वादे करते हैं और भूल भी जाते हैं लेकिन हम यहाँ पर आपको जो ये चीज बता रहे ना डीज के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ये बिल्कुल सच्ची है तो इसके ऊपर अमल कीजिए जिंदगी में खूबसूरती हासिल कीजिए और ठट से जिए अच्छा मुलाजम भाई को प्रोग्राम पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया चाचा तुम गाने की फरमाइश कही है गाने की तुम लिंक शेयर करे सर जो बिल्कुल अलाइवटनासी और हमारे साथ है फहीम भाई क्या कहते हैं तेरी महफिल अच्छा हाँ लिखा है तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा कुछ देर अपनी दहलीज पर पड़ा रहने दे जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा अच्छा वालेकुम अस्सलाम उलैली सलामत कहते रेशम गली लाड़काना से अदा कैसी हो तबीयत कैसी भाम असफा ठीक आया तां बुधायो हाल अवाल जो रेशम गली में अची वया तो तवा डी स्किन जो फेस वॉश लाजमी वठी वंजो ठीक आ एंड डी स्किन जो जो को फेस वॉश न हो तवा के आराम सा रेशम गली में मिली वेंदो और जी यहाँ पर अब्दुल रजाक कुंभर भाई हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में आप हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया निजाम भट्टी भाई मटियारी से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं थैंक यू और चाचा लिखते हैं कि हम परेशान नहीं थे हम तो आपकी और डी स्किन प्योरी क्रीम की राह तक रहे थे जी हम आ चुके हैं और फरवा कहते हैं आप ही सम लाइंस रीड कीजिएगा इंसान मिट्टी से बना है मिट्टी में ही मिल जाना है फिर किस बात का घमंड है आखिर सब कुछ यहां ही छोड़ के जाना है बिल्कुल जी बिल्कुल और तारिक भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं तारिक भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई और हमारे साथ ही सैयद फारूक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम माय डियर आरजे सदरा मुस्कान सैयद फारूक शाह फ्रॉम खैरपुर एंड आपका पुराना लिसनर जी जी बिल्कुल आप हमारे पुराने लिसनर हैं आपको वेलकम कहते हैं अच्छा अलीशा कहती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बेस्ड है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे और मेरे मामू परवेज अली चांडियो को आप चलें क्या बात है ऐसे ही आप इस्तेमाल करती रही आप कुछ दिन पहले पूछ रही थी कि मिलती है या नहीं मिलती हमारे थारो शाह में तो हमने अवेलेबल करा दी तारिक भाई ने अवेलेबल करा दी तो देख लिया आपको मिल भी गई और आपने इस्तेमाल भी कर ली और आपको अच्छी वाले रिजल्ट भी मिल चुके हैं तो ऐसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइए इस्तेमाल करती जाइए और खूबसूरतियाँ हासिल करते जाइए आपका हमारा साथ प्रोग्राम में पूरे 3 बजे तक का है तो यहाँ पे टाइम जरा देखा तो टाइम हुआ है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा पूरे पूरे 3 बजे तक मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए

0: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी. हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम. अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट, पर यू कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट रॉयस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में. जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट. उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती. हर ॾींहुं रहो ब्यूटिफुल. सुपर वाइट रॉयस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
4: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं White Asian D Skin Beauty शो स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज का अंदाजा तो आप लोगों को हो ही चुका होगा कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की स्किन के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज करते हैं जब उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो कई बार ऐसा भी सीन हो जाता है कि हम जो इतना अपनी स्किन के साथ जुल्म कर रहे होते हैं वो ऐसे कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी स्किन टोन जो है वो किस टोन की है, हमारी स्किन के ऊपर कौन से प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर आप लोगों को जब समझनी होती कि भाई जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब इस तरह का कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करे होते ना जो आपकी स्किन के हिसाब से ही नहीं होता तो आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है। फिर आप बाद में ये कहते हैं कि भाई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको सही तरीका बताया जाए, सही प्रोडक्ट बताया जाए तो यकीनन आपको वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास आप लोगों के लिए यस वन एंड ओनली डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आप जानती हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है जनाब, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि एक मेडिकेटेड फार्मूला

यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो आपको फेशियल वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। एक और बात भी है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको परफेक्ट वाले निखार देने वाला प्रोडक्ट है। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि भाई मेडिकेटेड फार्मूला भी हो और फेशियल वाला जो है ना आपको रिजल्ट्स भी दे और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको परफेक्ट वाला निखार दे, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम से। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए। और ये जो आपको मार्केट में बताई जाती है ना कि भाई जल्दी से प्रोडक्ट ले जाएं, जल्दी में आपको गोरा बना देंगे, इस तरह के प्रोडक्ट से बचा करें क्योंकि उनके अंदर बड़े हार्श से केमिकल ऐड किए जाते हैं और जब वो केमिकल वाला प्रोडक्ट अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो आपकी मासूम और नाजुक सी जो स्किन होती है ना वो जरा मैनेज नहीं कर पाती और आपकी स्किन खराब हो जाती है। तो कुछ इस तरह के लाइट वेट फार्मूले यूज किया करें जो मेडिकेटेड फार्मूले हो, आपकी स्किन के लिए सेफ हो, आपके लिए सेफ हो और उल्टा आपको खूबसूरती भी मिलती रहे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी करीबी जनरल स्टोर से जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं भी मिल रहा है फर्ज कर लीजिए तो फिर आपको जो नंबर बता रही हूँ उनके ऊपर आप जरूर किया करें, कॉल किया करें या फिर मैसेज किया करें। आपको रिस्पांस मिलेगा जनाब और बड़ा फास्ट रिस्पांस मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कॉल करते रहें आपकी कॉल रिसीव ना हो, आपको रिस्पांस मिलेगा। और आप उन्हें बताइए कि फलां जगह पर जो है वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा दें तो फाइनली आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। और जी उसके अलावा डी स्किन का फेस वॉश उसकी क्या क्वालिटीज हैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन आप जो है ना हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी प्यारे प्यारे फीडबैक्स हमारे साथ मौजूद हैं तो साथ साथ आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है प्रोग्राम के अंदर, तो उनको भी जरा शामिल प्रोग्राम रखते हैं और जनाब उनको एक प्यारा सा गाना भी डेडिकेट करना है। और बताएं वो कौन है हमारे साथ? तो फाइन ट्रेडर्स बेरिया रोड से आबिद भाई हमारे साथ मौजूद है। आबिद भाई जो है जी उन्होंने नोशेरो और थारोशा पटीदन बेहरिया रोड ऑल सिटीज में डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा दिया है। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं नोशेरो फेरो से, थारोशा से, पटीदन से, बेहरिया रोड से, आप सारे लोग अपने करीबी जनरल स्टोर से जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइटिश के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और ये जनाब आबिद भाई ने आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए। आबिद भाई हमारा प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और फाइन जनरल स्टोर जो है वो वहां पर उनकी शॉप है, यानी कि वो उनकी शॉप है। तो आबिद भाई को हम वेलकम के दे, प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं और उनके लिए एक प्यारा सा गाना हमारी लिस्ट में लाइनअप है तो हम गाना एंजॉय करेंगे साथ साथ और आप लोगों के साथ मजीद बातें करेंगे कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आइए जरा ये प्यारा सा गाना एंजॉय कर लेते हैं। और हमारे साथ महर इरफान सियाल साहब भी मौजूद है, कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम आरजे, वी लिसनिंग योर शो फ्रॉम लियाकतपुर। ओके सर जी, आपको वेलकम एंड खुशामदीद। तारिक भाई लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे आबिद भाई फाइन ट्रेडर्स बेरिया रोड से। आबिद भाई को वेलकम एंड खुशामदीद के साथ ही प्यारा गाना डेडिकेट करते हैं। सो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं। आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते जा रहे हैं। और ज़ेफ लिखते हैं कि आज हम भी आए हैं, बहुत अच्छा किया जी आपने, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। मेहताब अली इंटर में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम मेहताब भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक। अलीशा लिखती है कि उसकी आंखें एक तरफ, जादू टोना एक तरफ, हाय अल्लाह। लिखती है कि आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू। सद्दिको।

भाइयो न भाइयो पर असीं अवां जायो असां खे रोज अवां खे बुधाइण ई दासी त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तव्हां जी खूबसूरती लाइ छो ज़रूरी आहे. सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप यूज़ करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप सब लोग कर सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो परचेज कीजिए और हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाइए. अच्छा फरवा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं जी. और अलीशा कहती है कि मैं तुम्हें इतना सोचती हूँ कि तुम मुझे दिखाई देने लगती हो. अरे भाई बाप रे. मोहम्मद मीरन जखरानी में सुन रहे हैं जेकब आवाज से, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई को वेलकम हो गया. बशीर बलोच हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ आप बताएं. कहती हैं आपका शो सुन रहा हूँ कराची कास. अच्छा कायदाबाद से बशीर अहमद बलोच एंड आरजे नूर मोहम्मद भुट्टो को सलाम. ओके हो गया भाई जी. कहती हैं आपका शो सुपर से भी ऊपर, आपकी वॉइस माशाल्लाह लाजवाब है. अदी जियो तमाम भी जियो भा, पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए पो जी. हाँ जी.

चाचा कहते हैं के कोने खाना के कुंड खा दुनिया जे डी स्किन ब्यूटी क्रीम शो बुधी रहा हाँ जी दुनिया जे सदी कुंड कुंड खा असा के मानू बुधन पया आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कन पया सही ता के खबर रहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ पाकिस्तान में न बल्कि बाहरन मुल्कन में भी तमा के मिली रही है अगर तमा जो फर्ज काडे बाहर वणण जो इरादो थे तो या ता वनी रहा हो टेंशन न वठो बाबा उते भी तांगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलंदी सो फिलहाल तो तमा इते आयो मौजूद पाकिस्तान में लाड़काने में या सिटी केड़े भी खतां जो ताल्लुक है तो ता पाजे करीबी जनरल स्टोर से हल्या वनो ता नालो वठी तलब कयो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डे आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी या निशानी डॉक्टर माइजू फोटो विथ अस जेके जेके बेचारा पढ़ियल ना हन मानु जिन के नालो न इंदो आहे पढ़न तो इही न निशानी ते वनी माने करीबी जनरल स्टोर सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के वठी अचो था आई इहा निशानी आहे बाबा ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथा एक डॉक्टर पाइजो फोटो आहे आई उनका अलावा बाकी जेके पढ़ियल आन वे ता नालो डिसी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचन था सो तवा भी वठी चोई तवा भी सोना थियो बाबा तवा जो भी पूरो पूरो हक आए खूबसूरत थियण आई पोस्ट के लाइक और शेयर करना हलो अच्छा जान मोहम्मद खास केली भाई कहते हैं हम भी सुन रहे हैं भाई जान आपको भी वेलकम कहते हैं आबिद भाई कहते हैं कि हम आपका प्रोग्राम बेरिया रोड से सुन रहे हैं थैंक यू वेरी मच आबिद भाई और जेफ लिखते हैं कि 2 साल से आपका शो सुन रहा हूं आज फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है अरे भाई 2 साल से सुन रहे आज पहली बार आए ऐसी भी क्या मजबूरियां कि 2 साल सिर्फ सुनते ही रहे हैं फिर तो आपको मेरे प्रोग्राम की सारी बातें पता होंगी आपको ये भी पता होगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप क्यों इस्तेमाल करेंगे तो मुझे बताइए जल्दी से और जान मोहम्मद खास के लिए कहते हैं जबरदस्त प्रोग्राम जबरदस्त आवाज थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई अर्ज मोहम्मद गोला भाई जेका बाबासी हमारे साथ मौजूद है थैंक यू प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है मैं जल्दी से आपके कमेंट्स पढ़ूं ये ऊपर भागते जा रहे हैं बिलावल हमारे साथ है बिलावल वसन वसन आबाद शहर का तमासा के ज्वाइन करवा थैंक यू नरेश हमारे साथ मौजूद है नरेश लिखते हैं सलाम आदाब ऑल ऑफ यू वॉचिंग फ्रॉम इंडिया यो इंडिया वाले भी आ चुके हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए इंडिया वालों आप भी लगाए

भाई ये है बलोची गाना, लेकिन ये इसकी वाइब इतनी कमाल की ना कि सुन के बड़ा ही मजा आ जाता है। और आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। ये फहीम भाई लिखते हैं कहता डी स्किन का फेस वॉश मेरे सामने पड़ा है, कमेंट में फोटो भेजने का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं तो हाँ जी आप मुझे फोटो भेज देते। ठीक है ठीक है, तवा ते यकीन आ ट्रस्ट आ तवा ते। उज़ैफ लिखते हैं कि आजकल सारे शायर बने फिर रहे हैं। हाँ भाई मोहब्बत कुछ चीज ही ऐसी है। दर्दे दिल हमारे साथ नाजू दिवाली को मसलम गुड आफ्टरनून, कैसी हैं स्वीटी। बिलावल भाई कहते हैं कि तमाम बेहतरीन प्रोग्राम वसन आबाद शहर खां तमाम की बुद्धि रहा आयूं सबनी तमाम सोनन दोस्तन के सलाम डिनाइन वालेकुम अस्सलाम। नरेश भाई लिखते हैं कि नाउ इंडिया टाइम ठीक, हां जी इंडिया आधा घंटा आगे है। अच्छा दर्दे दिल कहती है कि सारी ख्वाहिशें अगर पूरी होती तो शायद तकदीर की खूबसूरती खो जाती, कुछ ना मिलता भी कभी कभी, कुछ ना मिलना भी कभी कभी नसीब की मेहरबानी होती है, और बेशक अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन होता है, बेहतरीन से भी बेहतरीन होता है।

अच्छा उजेफ लिखते हैं कि इंडिया वाले क्रीम नहीं फेस वॉश लगाएं ताकि नींद से जागे, वो सो रहे हैं क्या? अच्छा फिर आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक हो गया। रशीद कोसु भाई हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, वेलकम। मेटा ऑफिशियल हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह नाइस यू, थैंक यू। ओके ओके उजेफ आपने टॉपिक का जवाब दिया है और चाचा आपने लिंक शेयर कर दी है, आपका गाना भी लगा देंगे। पोस्ट को लाइक और शेयर किया है या फिर नहीं अभी तक रहता है, जल्दी से कर लीजिए क्योंकि पोस्ट को लाइक और शेयर करना जरूरी हो जाता है, वो इसलिए ताकि हम बहुत से लोगों को बता पाए कि भाई साहब आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानिए और आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और जेन कहते हैं कि हम ना आवाज आएंगे मोहब्बत से, ये गाना हाजिर हाजिर लगायूं था थोड़ा सब्र करो। और महर इरफान सियाल साहब कहते हैं नाइस यू मेहमान जी, थैंक यू वेरी मच सर, ये तो भाई आपकी मेहरबानी है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है। अच्छा फरवाद तुम्हें गानों लिखी हुआ, ओके। फहीम भाई कहते हैं आपको टॉपिक का जवाब मिलता जा रहा है, मैंने अभी तक टॉपिक नहीं सुना, मेहमान आए हैं तो। अच्छा टॉपिक ये है कि आप मुझे बताएं वो कौन सा एनिमल है जिसका अगर कोई एक बॉडी पार्ट कट भी जाए तो वो उसे दोबारा से उगा देता है। हाँ जी वो एनिमल है, लेकिन मैं प्लांट्स की पता नहीं क्यों बातें कर रही हूँ। और अबू हनीफ लिखते हैं कि खामोश जबा उदास दिल सोए हुए नसीब, ए जिंदगी तेरे तोहफों पर हम आह करें या वाह करें। भैया वाह ही कीजिए क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ पर हमारे साथ टाइम चेक है और न्यूज ब्रेक है, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं यूं जाकर यूं वापस आते हो, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

से हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ये चीज तो मेरी आप याद ही रख लीजिए। उनके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका है अंदर वाइटामिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन आहे, ये जेके ॿ चीज़ूं आहिनि वाइटामिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स, ई बाबा फेशियल जे अंदर ये चीज़ूं एड थियल हूंदियूं आहिनि ऐं इन्हनि ई वजह सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर जेको आहे न फेशियल जी क्वालिटीज़ अची वियूं आहिनि। त अवां खे जेके रिज़ल्ट मिलंदा सुठा वारा उहे इन ई चीज़ जे करे मिलंदा ऐं पूरे पाकिस्तान में ॾिसो था तव्हां केॾा प्रोडक्ट्स आहिनि, त उन्हनि हेॾनि सारे प्रोडक्ट्स में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर वाइटामिन ई बीट्स आहिनि ऐं माइक्रो बीट्स आहिनि ऐं ॿ टे ॿिया प्रोडक्ट आहिनि पूरे पाकिस्तान में जंहिंजे अंदर इहे चीज़ूं एड थियल आहिनि। अगरि तव्हां वटि कोई सुठो प्रोडक्ट आहे मौजूदु त उन मां फ़ाइदो वठो बाबा, इस्तेमालु कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो हिन ये दो दिनों में आपको रिज़ल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसकी तो क्या ही बात बताऊं, क्योंकि इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हज़रात, ख़वातीन, हर कोई डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल कर सकता है। ये इतना क्रीमी सा फेस वॉश है और डी स्किन के फेस वॉश के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है। और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना, ये आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन पर ये जो गर्द गुबार जमा हो जाते हैं, गंदगी जमा हो जाती है, डस्ट पोल्यूशन जमा हो जाता है, और मर्द हजरात खास करके अपने स्किन के सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो भाई बेस्ट तरीका है कि आप बस डी स्किन का फेस वॉश यूज कर लीजिए। और डी स्किन का फेस वॉश सिर्फ यूज करना ही काफी हो जाता है, आपके चेहरे पर ये तमाम चीजें रिमूव हो जाती हैं, आपके चेहरे की स्किन जो है वो हाइड्रेट हो जाती है, आपकी चेहरे की स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है और आप ग्लो करते रहते हैं। तो ग्लो कीजिए और खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए और आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताया करें, क्योंकि मुझे पढ़कर और सुनकर बड़ी खुशी होती है कि मेरे जो लिसनर्स हैं वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके वाकई अच्छा रिजल्ट्स हासिल कर चुके हैं। और साथ साथ आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। जनाब आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताइए वो कौन सा एनिमल है जिसके अगर जिस्म का कोई पार्ट कट भी जाता है तो वो दोबारा से जो है ना वो रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से वो पैदा हो जाता है। और इस सवाल का आपने मुझे जवाब देना है अगर आप मुझे 881 पर ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे साथ मौजूद रहिए। फेसबुक की पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, ठीक है, ये चीज बड़ी जरूरी हो जाती है, तो लाइक और शेयर किया करें। और मुझे बताएं आप भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम का हिस्सा है। मेरे पास आप लोगों के लिए गाने मौजूद है जी प्रोग्राम के अंदर, तो गाने बिल्कुल आप लोगों को सुनाते जाएंगे। हाँ जी, तो ऐसा करते हैं, ये वाला गाना सुन ही लेते हैं। और इस गाने की फरमाइश फरवानी करती थी, काफी दिनों से उनका गाना जरा इग्नोर हो रहा था, तो आज फाइनली उनका गाना एंजॉय करते हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम।

बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गाना सुनेंगे, साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस हैं तो उनकी जाने भी आ जाते हैं। और यहाँ पर हाँ जी गाना सेट कर रही थी मैं जरा। ओके सो यहाँ पर हमारे साथ हैं, एक मिनट में पैनल की जाने आ जाती हूँ। और हमारे साथ हैं ये गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू भाई, कहते हैं आपका शो वेरी नाइस, सलाम आपको जी, वालेकुम अस्सलाम। मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं आप और आपकी फैमिली, क्या बात है। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू लिखते हैं कि सॉन्ग बुध राय नुसरत फतेह अली खान का, गम हो या खुशी हो तुम मेरी जिंदगी हो तुम, यो गाना जाडू मा वैसे भी हलाया हां, सो थैंक यू थैंक यू। मकसूद मल्हा कहते हैं हेलो सिद्रा मुस्कान, मुझे शमन का गाना सुनाना। ओके आई ट्राई। और उनके अलावा गोट नबी दाद बम्बरो नारो खाए माम डिनो बम्बरो के अधिक खुश खुश हो असी भी तवा जा आयो भाईर जी जी बिल्कुल ता मुजा सोना भाईर आयो आई तवा वरी जदे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना पो सफा सोना सोना थी वेना, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाजमी कजो। इरम कहती है इरम ओ बेठी बेठी इरम के भी अलाए छा थी वेंदो आ बाबा, इरम में एडियो एडियो गालू कंदी आ मतलब डिसी करी मुखे खिल इंदी आ एडी का गाल को निका इरम तमा आ जाई वहम कयो आहे। हां जी और ये हमारे साथ गोट गुलाब लगारी खान साबिर लगारी सुल्तान लगारी रिजवान लगारी, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आपका शो नाइस है।

अच्छा ये मुझे ख्याल में भात वहां गानो लिखियो आहे सो मा कोशिश कांदी ताजी पसंद जो गानो हलाईंदा से ठीक आहे और हमारे साथे दादू खान इमदाद जतोई अब्दुल खालिक जतोई मुबशिर हुसैन जतोई किफायतुल्ला जतोई फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंजूर एक मानू जे सर जे खातिर है हेवा जो गानो बुधायो तव मा कोशिश कांती गानो ता के बुधराईंदा से और हमारे साथी हमारी फजली फजली कहती है हां जी लाइव आयो सफा जिंदा दिसो ने अच्छा दर्दे दिल कहती है कि सुनो चंदा मेरी मसरूफियात के लम्हों में चैन की घड़ी है तू आगे तुमको पता है जी जी आगे तो मैं सबको जानती हूँ और हमारे साथ ये अस्सलाम वालेकुम उस्ताद सिड्डूबा जी उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगी आप मोरों में भी अवेलेबल करा देना डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट ताकि और आसानी हो जाए स्पेशली मेरे लिए और एक सवाल था वैसे मोरों में तो ऑलरेडी मिल रही है तो आप जरा अपने करीबी जनरल स्टोर से जाकर मालूम लीजिएगा ठीक है और आपने सवाल क्या पूछा है लिखते हैं हाँ लिखते हैं कि एक सवाल था मुझे उसका जवाब नहीं आ रहा था प्लीज आप बता दीजिए अंधेरा जब रात को होता है तो सूरज दिन को क्यों निकलता है अगर सूरज की दुश्मनी अंधेरे से है तो रात को निकलता क्यों नहीं आपका शागिर्द मोरो से फिर दोस्त भाई हमारे साथ देखिए कितना मासूमाना आपने सवाल पूछ लिया एक तो उसे जनरली अगर देखा जाए तो ये सवाल इसका जवाब ये हो सकता है कि भाई अल्लाह पाक ने देखे ना सारी चीजें अपनी तरतीब से तैयार रखी है एक एक कौम थी जिसके ऊपर ऐसा था कि उनको जो ना सिर्फ रात ही रात दी गई थी तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी तो ऐसा वाला सीन है कि दिन अगर ऐसा है कि सूरज जब रात को निकले तो या दिन को निकले एक ही बात है ना क्योंकि रातों वाला पाक ने आपको आराम के लिए दी है तो अगर रात को भी सूरज निकला तो फिर मसला हो सकता है तो अगर रात आपको आराम के लिए दी गई है तो आराम कीजिए क्योंकि सूरज का काम है दिन में निकलना और ताकि आप अपने लिए अच्छे से दिन को गुजारें काम करें खाएं पिएं और रात फिर जब हो जाए तो आप सुकून से सो जाइए और नींद और आराम भी बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए अल्लाह पाक ने ये चीजें तरतीब से रखी हुई अगर थोड़ा इस तरह का सीन हो जाए ना कि देखें सूरज ही सूरज हो और रात हो ही नहीं तो फिर मसला हो सकता है इसीलिए जो चीज जिस तरह है लॉजिकल देखा जाए तो ये जरूरी है और फिर दोस्त भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए क्योंकि मोरो में आपके लिए हमने अवेलेबल करा दी है पहले से ही आप बस जाइएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर से जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करके आइएगा वैसे डी स्किन का फेस वॉश भी आप यूज कर सकते हैं तो वो भी आप परचेज कीजिएगा

जना बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय करें और साथ साथ अगर आप भी जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो हमें जरूर बताया करें। और चाचा आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया जी। और जान मोहम्मद खास के लिए भाई कहते हैं आपका अपना लिसनर कोट, अच्छा कोट गुलाम मोहम्मद से जान मोहम्मद खास के लिए आपका प्रोग्राम जबरदस्त है, थैंक यू वेरी मच, आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। और साथ साथ जो है ना जी जी बिल्कुल, आप लालकाना से रेशम गली में कहीं पर भी आप किसी भी शॉप पर चले जाएं वहाँ पर आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल होगा और मिल जाएगा सुकून से। तो लालकाना के लोगों के लिए तो कोई मेरे ख्याल में टेंशन की बात नहीं है, वैसे तो हर जगह हमने अवेलेबल करा रखे हैं, चाहे आप मोरो से हैं, मीरपुर खास से हैं, मटियारी से हैं, सकरण से हैं, मातली से हैं, नूरियाबाद से हैं, सखर से हैं, तो हर जगह से जाकर आप इजीली डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं।

अच्छा फहीम भाई, आप मिलिएगा, लेकिन बात कराने वाला सिस्टम जो ना ये जरा क्लोज है, तो बात नहीं हो सकती, बस आप उनसे मिलिएगा और डेज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कीजिएगा। और इन खां अलावा जेको आ सपोस्ट की तमाम लाइक एंड शेयर कोने कयो आए, जल्दी करी वेठो। वहीद वफाई भाई, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, कहते हैं आपका शो माशाल्लाह बेहतरीन है, जेको पावा से आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू के साथ आपको वेलकम कहते हैं। और इकबाल आशारी हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं, इकबाल भाई आपको भी वेलकम कहते हैं, और आप भी डेज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं। और साथ साथ हैं जी हमारे साथ उजैफ, कहते हैं हाँ हाँ सब पता है, चलें जी अच्छी बात है, और कहते हैं इंडिया वाले जी इंडिया वाले तो इस्तेमाल करेंगे लाजमी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। और प्रिंस मोहसिन लाशारी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ प्यारे भाई, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है, मजे में। और ये जी चाचा ने हमारी पोस्ट को इंडिया तक पहुँचा दिया है, बहुत अच्छा किया चाचा आपने। और रशीद भाई बहुत शुक्रिया, आप हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं। और हमारे साथी आबिद भाई कहते हैं शुक्रिया मैडम, कोई बात नहीं प्यारे भाई। और कासिम सुमरो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपने भी हमें इंडिया से ज्वाइन किया है, कासिम सुमरो आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। और प्रभांजन त्रिपति हमारे साथ है, प्रभांजन त्रिपति जी आपको भी वेलकम हो गया, आप भी हमें इंडिया से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया के साथ आपको भी वेलकम कहते हैं। अख्तियार कोसो भाई हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, भाई जान वेलकम। सुफियान अहमद, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ आप बताएं कैसे हैं। अब्दुल अजीज उमरो भाई, वालेकुम अस्सलाम।

0: बस भाई तलहा आ चुके हैं, कौन तलहा मत पूछिएगा।
1: वो करें क्यों जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ।
2: If I were you and you were me, you were me, I would forgive you जैसे तू हो एक सुरंग में उसके एंड में तुझको।
0: अच्छा ये जो दुनिया को ठीक करने की बातें आ जाती ना बीच में, तो दुनिया को ठीक करने का जो जिम्मा होता है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर इंसान की मुझे लगता है कि हर इंसान जो ना वो हर इंसान को हिस्सा देना चाहिए इस चीज के अंदर। अगर आप देखें जरा, आपने दुनिया को ठीक आप नहीं कर सकते बेशक, लेकिन आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो जरा अपने ऊपर ध्यान दीजिए और खुद रोज एक अच्छा काम करने की कोशिश करें, खुद को सुधारने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली कुछ चेंज आ सकता है दुनिया के अंदर। और किशोर भाई हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हेलो हाई अदा अज नाश्तो कराए वन जा हाँ उठे लगे तो तवा। चलो ठीक है, तुम्हारा नाश्तो असंत खाइंदा बुधायो। अच्छा अख्तियार कोसु भाई को प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। किशोर भाई कहते हैं कि तुझे खुशी लाए आओ कुछ भी करे सगन तो
2: फ्लॉस कैसे लिखता हूं ये वर्सेस
0: आओ डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया तो पंजे दोस्तन के भी चवंदस हु भी लगाए आपस वारा आसपास वारा सब लगाए न हेठ वेठल भी लगाए न मथे वेठल आयन उए भी लगाए न मतलब सब लगाए न ही गीत गाइंदा रहंदा राइमिंग बन गई वैसे वाकई देखा जाए तो। आप बिल्कुल सबको बोले डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए सब लगाए ताम भी लगाए ताम भी लगाए ताम भी लगायो। अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर डी स्किन जो फेस वॉश भी आए ना कि नरे साजो सही
1: है बसर करते हैं तेरे दिल में असर है तो शिकवा करें क्यों जिक्र होता है हर महफिल में वो चाहते पर दिख

0: क्यों जिक्र हो।
1: बिल्कुल जी, असर तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम देने वाली है जो कि सिर्फ और सिर्फ दो रातों में, तो लाजमी लगाइएगा और कमाल देखिएगा। इकबाल आशारी भाई ने आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, बहुत शुक्रिया। अबू हनीफ अल बलूची लिखते हैं कि इन फूल फरोशियों को कैसे समझाऊं, उसकी खुशबू सिर्फ उसी से आती है, प्लीज सॉन्ग। अच्छा मैं ॾिसां थी गानो मूंखे मिलियो त तव्हां जे लाइ हलाए वठूं था, ठीकु आहे। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद है। और इसी के साथ रमजान भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, रमजान भाई आपको भी वेलकम कहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर टाइम हुआ है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, आप सुनिए जरा तला साहब की बात और मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।
0: भाई दिल मेरा साफ में इंडस्ट्री का वो राज, भाई डरते मुझसे आज भी शाहीन आता बाज नहीं, भाई फुल 50 तलहा जाने खोला हाथ नहीं, कागज को मैं आग दूं पिछवाड़े इनके राख, भाई सरब दिल में असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, दिल में सवाल बड़े पिछे हुए जाल बड़े।
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
6: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
7: Khoobsurti hai jo asal raaz. Sirf D Skin Beauty Cream. Hina mein maujood vitamin E beads ay jadid micro beads formula. Amaji skin ke banaye nikhri ay chamakdar. Sirf Mindi Han mein. Dark spots ke kare khatam. Ay diye kudrati asli glow. D Skin Beauty Cream. Asli glow har diye jo show. A product by Biocon International Pakistan.
8: ऐ बेरोनो की स्किन हर इमेज लाइक छा डैमेज ऐ डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जे में आहिन चार अंजू खूबियो ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे ऐ चार अंजू खूबियो जिल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बिहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: खां शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताई याद रखना डॉक्टर साहब हराचर ते सुबह जो 10 बजे खां शाम जो 4 बजे ताई वेझो इमाम मेडिकल सेंटर जकवाबाद में मरीजन जो मुआयनो कंदा आहिन राबते जे लाइ फिदा हुसैन मोबाइल नंबर 0334220515 4
1: GA FM 88
2: सिंध की आवाज
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दिहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

बिल्कुल सी कुछ चीजों की वाकई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे इंसान मौजूद होते हैं जिनका होना हमारे लिए काफी होता है। लेकिन यहाँ पर बात जरा हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की करेंगे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ऐसा वाला सीन हो चुका है कि आप अपने पसंदीदा इंसान को देना चाहते हैं तोहफे में डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश, तब तो भाई क्या ही बात हो जाएगी। क्योंकि अगर आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला है, अच्छा आपको निखार मिल चुका है, रिजल्ट आपको बेहतरीन मिले हैं, तो आप अपने प्रिय प्यारे को गिफ्ट भी कर सकते हैं, तोहफा दीजिए जनाब। जैसे भी कहते, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो अगर आप भी अपनी मोहब्बतों को बढ़ाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को तोहफा दीजिए, और सबको बोलिए कि जनाब आप भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर दिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। आजकल के दौर में हर कोई चाहता है कि उसकी जल्द जो है वो साफ सुथरी हो, नरम दिखाई दे, फ्रेश महसूस हो, लेकिन उसके लिए ये भी चीजें हम जो है ना वो देख रहे होते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। और खास करके आप उन प्रोडक्ट की जानिब जो है ना जाया करें जो कि भाई मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार किए गए हो, जिनका फार्मूला लाइट रखा गया हो, और जो कि आप लोगों के स्किन के हिसाब से तैयार हो और आपकी ऑल स्किन टाइप के लिए हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, अपने लिए अपनी रोजमर्रा की डेली रूटीन में आप शामिल कीजिए जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, और अपनी जिल्द को केयर देने के लिए अपनी रोजमर्रा रूटीन का हिस्सा बना लीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप यूज करते रहेंगे ना, तो आप लोगों को एहसास होता है कि भैया वाकई कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि कई मरतबा हम जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम थक जाते हैं कि भाई हमारी स्किन के ऊपर जो है ना कौन सा प्रोडक्ट सही साबित हो सकता है ये तो हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर यहाँ पर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं ख्वातीन हैं, तो आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा हासिल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये जनाब सारे प्रोडक्ट से बहुत ही हटके और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट तैयार हुआ है, क्योंकि ये 2-in-1 फार्मूला है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फेशियल के रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा महसूस होता है आपको कि भाई आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। अच्छा, ये चीज भी जरा मैं वाजे करती चलूं कि आप लोगों ने ये चीज सुनी है प्रोग्राम के अंदर कि भाई सिद्रा बता रही है कि हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो हमें फेशियल के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो लगाने के तरीकेकार वो जरा स्किप देते हैं कि वो ऐसे लगाते हैं भाई जैसे आप कोई फेशियल कर रहे हैं। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करें, अप्लाई करें, तो लगाने के तरीकेकार भी आपको आने चाहिए। आप रात के टाइम इस्तेमाल करें डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, क्योंकि दिन में वैसे ही आपको बहुत सारे काम होते हैं, तो आप दिन में नहीं, आप रात में इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। रात में बस सुकून से अपना फेस वॉश कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए, और उंगलियों की मदद से आराम आराम से लगाइए, प्यार से लगाइए, होले होले लगाइए, और इस तरह लगाइए कि क्रीम थोड़ी आपके चेहरे पर नजर आनी चाहिए। जब आप ये प्रोसेस सही से करते हैं तो क्रीम आपकी, ऐसा होता है ना कि जो लोग क्रीम लगाकर स्किन के ऊपर मसाज करने लग जाते हैं, तो मसाज नहीं किया करें भाई, सुकून से लगाएं, प्यार से लगाएं, क्रीम खुद ही आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी और आपको अच्छे वाले रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और डी स्किन का फेस वॉश लगाइए। अगर आप ऑलरेडी लगा रहे हैं तो हमारे साथ रिजल्ट लाजमी शेयर कीजिएगा। उनके अलावा बाकी जगह सोना सोना माण असा के बुधन पया सभी की चौथा बाबा भली करी आया प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में आई जिन मानो अन्या तीन पांच करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल न करायो आए तो तवा भी अवेलेबल कराए सको था, बस तवा की जगह नंबर्स बुधाई दिया उन नंबर से रातों गयो जिन मानो अन्या तीन नंबर नोट 9 गया तो नंबर नोट कर हाँ तक बुधाया थी। ओके, सो नंबर 03-12-50-25-907 बुरी 312 50-25-970 आई बियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुरी 332 73-84-309 ये बई नंबर सांचे के तमा डायल करे पहिंजी करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था। सो इस्तेमाल करते रहिए और आपको जो रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं वो हमारे साथ शेयर जरूर किया करें।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हम एंजॉय करेंगे. साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस ही उनकी जाने भी आते हैं. और यहाँ पर आयशा हमें सुन रही है, आयशा मेमन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है. आयशा को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं. और फजली कहती हैं जी जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम वेलकम कहती हैं. आपको भी कहती हैं सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स. और मैं और अम्मी जान साथ में आपका शो सुन रही हैं. ओके जी, आप दोनों को वेलकम कहते हैं. अच्छा, दर्द दिल कहती हैं कि कल शाम को आपने पूछा था ना शो में कम आती हो, थोड़ा सा काम था. मतलब ये नहीं कि मैं आपका शो नहीं सुनती. तुम तो लाइफ की खास इंसान हो, मतलब सबसे स्पेशल सोच लो.

तो ये बात है थोड़ी, ना सोना ना चांदी ना कोई महल। चले भाई सही बात है, आजकल सब यही चाहते हैं, अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आई थिंक सो। सही बात है। अगर ये पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। वैसे कुछ लड़कियां अगर ये ऐसी होती हैं, अगर उनको सब कुछ भी दिया जाए तो फिर भी वो खुश नहीं होते। खैर जी, अपनी अपनी बात है। और किशोर भाई कहते हैं कि हिन्ना भाखे च हुन्ना मुल्क में वञे जिते छह महीना रात ऐं छह महीना ॾींहुं हूंदो आहे। ॾिसो हुननि माण्हुनि जी ज़िंदगी केॾी मुश्किल आहे, कॉम्प्लिकेटेड। सो अदे खे वाके थोरो घुमणो फिरणो पवंदो। और फई भाई, हांजी हांजी, फरवा फारवा खाईंदी बाबा, तव्हां इहा टेंशन छॾे ॾियो हाणे। अख़्तियार कोसु भाई कहते हैं, आप जब जाती हो तो आपका अरे भाई आप पता नहीं क्या बात करें, मुझे आगे बात ही समझ नहीं आई। बस आप जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर हमने अवेलेबल करा दी है। और हुसैन हमारे साथ हैं, हुसैन जट भाई, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं नूरियाबाद से वसीम आपको सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई को वेलकम कहते हैं। रमजान भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं।

अच्छा किशोर भाई लिखते हैं कि टॉपिक ते जवाब थर्सडे को मैंने सही दिया था, कल भी मैंने नहीं सुना आपका जवाब, आज भी जवाब भूल जाओगे, इसलिए नदी नवे से तमाम जो जवाब किए मतलब असा फर्स्ट में क्या तो आया ही लेट आयो सो लोगों ने दे दिया है जवाब, ठीक है आप बैठ जाइए अपनी सीट पर। और इकबाल भाई आपने भी टॉपिक का जवाब दिया, ठीक हो गया।

ओके रे, सो गाना खत्म हो चुका है, दूसरा गाना हम लगा देंगे जो होने वाला है मास्टर मंजूर की आवाज में। एक भाई ने फरमाइश कर दी थी तो जरा हम इस गाने को भी सुन लेते हैं, और ये हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, आप हमें सुन रहे हैं, कहते अदी केड़ा हाल है तमाम जा लता जुड़ू आवाज बाबा ये कुछ ज्यादा हो गया मैडम लता की क्या बात। और कहते हैं कि तमाम जो सदाकत हुसैन मीरानी भाई हमारे साथ हैं, साहब बच्चल शामियानी सखर से हेल्पलाइन सेल ते राबतो कयो आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड फेस वॉश सखर सिटी वञण थियो त खरीद करे ईंदस। ओके भा, ओके तमाम लाजमी खरीद कजो। थैंक यू सो मच तुम असने प्रोग्राम में मौजूद आए। वैसे लता मैडम जो नालो वरतो तो यह गाल मुख याद अची हुई। ऐसो जिंदगी जेका है ना केतरी हर इंसान पाने जिंदगी का खुश कोने को। मुखे एकड़ो मैडम लता जो इंटरव्यू मतलब मु डठो हो जेमे मैडम यो चयो हो त उनका एकड़ो सवाल पूछो हो त अगर मतलब ताके बियो जन्म मिले त छा ता बे जन्म में भी लता मंगेशकर थन चाहिंदा त उनते मैडम जो एकड़ो जवाब मिलो वो मुखे एतरो मतलब इंप्रेस करे चुको मुचे जाई भी यार ही आहे। अगर असा का भी कोई पूछे त तमा अगर जेको जिंदगी तमा गुजारिया छा बियो तफो ताके मौके मिले त ता वो गुजारिंदा त मैडम एकड़ो जवाब नो त कदे भी मा लता न थिंदा छो त लता ये जिंदगी में जेके तकलीफ है दुख है वो सिर्फ लता के खबर आ है। सो या चीज वाकई मु ता नोटिस कई त अगर तमा यो सवाल के खा भी पूछो चाहे वो केतरो फेमस आ है केतरो रिच आ है त बाजार त तवा के खुश नजर इंदो पर वो आ चीज उना के खबर नी त होने जिंदगी में छापे हले असांखे ॾिसी करे लॻंदो बाबा वाह मैडम लता सॼी दुनिया हुन जी दीवानी हुन जी आवाज़ जी दीवानी ऐं छा न आहे न हुयो हुन वटि पर उन खां पुछियो त हुन चयो मां कॾहिं बि पंहिंजी ज़िंदगी में ॿीहर लता न थींदसि। इहा चीज़ आहे इंसान खे कुझु बि मिली वञे थो छा बि हू हासिलु करे वञे पर हू पंहिंजी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड मूंखे लॻे थो कॾहिं बि नथो थी सघे। बसि शुक्रगुज़ारी इंसान जे अंदरि हुजणु ज़रूरी आहे ऐं जेको तव्हां वटि आहे हुन में ख़ुशि रहंदा कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु बि कंदा कयो। अच्छा दादू खां इम्ताज तोई अब्दुल ख़ालिक जतोई मुबशिर हुसैन जतोई किफ़ातला जतोई फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंज़ूर ओयो बाबा हले थो गानो तव्हां इंजॉय कयो। और इहे मौजूद आहे वालेकुम असलाम सदाकत हुसैन मीरानी साहब बच्चल शामियानी सखर से सिस्टर मेरा पहला वाला SMS नहीं नहीं आपका पहला वाला मैसेज मैंने पढ़ लिया और कहते हैं आप बहुत शुक्रिया जी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और आपने लिखा है कि तारिक भाई से बात हो गई है और यस भाई तारिक भाई आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि आपने कहां से जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का परचेज करना है। उन्होंने आपको बताया बिल्कुल इसी शॉप से जाकर आप जाइएगा और परचेज कीजिएगा चाहे आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करें या फिर वाइट एज के परचेज करें। बात एक ही है मकसूद मला हमारे साथ कहते डी स्किन ब्यूटी क्रीम आए हाय मुझे पता है मैंने यूज कर ली है जी बिल्कुल ऐसे यूज करते रहिए। और ये हमारे साथ ही जयपाल भाई कहते हैं हेलो आरजे भाऊ आप हो ना सफा मवेठी है बाबा तां दिल जाए कयो कम कार करे तो पंजा और गोठ मोमन थेबू का हबीबुल्ला थेबू भाई शो तुम्हारा लाजवाब है। थैंक यू वेरी मच सोना भाई।

अच्छा तारिक भाई ने एक मैसेज भेजा, कहते हैं ये लाजमी पड़े मैडम सिद्रा हमारे अच्छे कस्टमर हैं। ओके सजाद रुस्तमानी माथली से हैं, मैसेज लिखा है तमाम शायरी लिखी है मुझे ख्याल में। सजाद भाई लिखते हैं कि जिते माँ जावस नई शहर जी घिटिया में पहरे जवान थियस ए माथली तोखे मुझा सलाम गाया मा तुझा केड़ा कलाम अमन आहिते जो तू आही शहर वन्या भी थो तुझे सीने मा सेर कया थो ए हीरो आहिन तुझा गुलाम ए माथली तोखे मुझा सलाम गाया मा तुझा केड़ा कलाम गाया मा तुझा केड़ा कलाम ए माथली तोखे मुझा सलाम। सजाद रुस्तमानी भाई माथली से मैं ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और सजाद भाई भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, जबरदस्त हो गया। रमजान भाई आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। उजेफ लिखते हैं कि बस आवाम चुप रहेगी तो ऐसा ही होगा। शुएब अली हमारे साथ हैं जी, आपको वेलकम कहते हैं, आपने शमन का गाना सुन लिया होगा। और महर इरफान सियाल साहब लिखते हैं कि ग्रेट प्रोडक्ट्स डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यस सर।

भाई ये मैडम सनम ने भी बड़ा गाना अच्छा गाया है, नेक्स्ट टाइम वो सुनेंगे। अच्छा आबिद ब्रोही हमें सुन रहे हैं, कहते हैं सो गुड शो, थैंक यू। वहीं भाई कहते हैं कि झंडो मरी वाले कहाँ गुम हो गए बाबा, तहां झंडो मरी वारन के एडो याद कयो जो झंडो मरी वारा बजी वया वाकई आने नजर न था अच्छा।

अरे चाचू चाहे तो झंडो मरी वाले सोना चांदी और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने गए। सोना चांदी तो लगा नहीं सकते लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा सकते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं और खूबसूरत हो जाइए। अयुना खा इलावा जी को आज सो अदो चाहे तो आजकल ये सब नहीं दे सकता तो लड़की कहेगी सही बात है। नूर खान में सुन रहे थे टॉपिक ओके। प्रिंस मौसल आशारी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने शायरी भेज दी है। और ये हमारे साथ है अली मुर्तजान सारी कहते कैफा हालो को या हबीबी, मैं ठीक हूँ, अब बताएं कैसे हैं, कहाँ गुमसुम हैं। अच्छा सरफराज अली गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है, मजे में है। ओके आप हमारे साथ ही अल्ताफ अली गादी बलूच फ्रॉम कराची, थैंक यू जी, आपको वेलकम कहते हैं। उजैफ कहते हैं बहुत जहीन लोग हैं यहाँ तो आप तो पहले से जानते हैं ना तो समझ जाइए। हाँ भाई लड़ाई वाली बात किसी को अच्छी नहीं लगती, मुझे तो नहीं लगती लड़ाई, लड़ाई मतलब पसंद ही नहीं है हमें। अच्छा हाफिज यूनिस बाबर भाई वालेकुम अस्सलाम, अब्बासी भाई हमारे साथ बहुत शुक्रिया, चेतन कुमार हमें सुन रहे हैं, हेलो। अरे भाई सर मेहर इरफान सियाल साहब आपने लिखा है प्लीज सॉन्ग इरशाद महमूद का, ये जो गाना आपने बोला है ना बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम जो ना मेरे पास दो मिनट जाके बचे हैं तो मास्टर करती ये गाना आपको मैं सुना दूंगी, पक्का पक्का मुझे याद रह जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, डेडिकेट बाबू भाई पीर जो गोट, ओके जी बाबू भाई को डेडिकेट कर देंगे। मोहम्मद सुमान कहते हैं हमारे नेटवर्क उड़ गया और शो मिस हो गया, अरे भाई ये तो बहुत बुरा हो गया, चलिए आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा कोई मसला नहीं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं मुझे लाजमी बताया करें। दर्द दिल कहती है कि तुम मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत रंग हो जिसने मेरे हर लम्हे को यादगार बना दिया है, तुम्हारी बातों में ऐसी मिठास है जो दिल को छू जाती है और अपना बना देती है, और तुम्हारी मौजूदगी मेरी हर थकन को राहत में बदल देती है, जब भी दिन के मशहूर तर लम्हात में या जिंदगी की उलझने मुझे घेर लेती हैं तो तुम्हारी याद एक नरम सी रोशनी की तरह मेरे दिल में उतर जाती है और सब कुछ आसान सा महसूस होने लगता है। मैं शायद हर बार अपने एहसासात को लफ्जों में बयान ना कर सकूं, मगर ये हकीकत है कि मेरी हर दुआ में तुम्हारा नाम शामिल होता है। ओके जी क्या बात है स्वीटी, बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया। यहाँ पर लेते हैं आप लोगों से इजाजत क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ चुका है। कहाँ से मुलाकात जी का मुझे थेपई हुआ थेपई जी, पंचम बजे वाली प्रोग्राम में दोबारा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करते रहिएगा क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी लोगों ने लगाए ना सबके पॉजिटिव रिस्पांस मिलते जा रहे हैं, तो आप भी लगाइए और इस्तेमाल करने के बाद खूबसूरतियां हासिल कीजिए। जयपाल भाई आपने शायरी लिखी है जनाब, बहते अश्कों की जबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती, मिले जो प्यार तो कदर कर लेना यारो, मोहब्बत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसी के साथ मोकलानी ना है बाबू से सलामत, साथ सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, love you all and take care.

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे मैं खुश्क और बीरोनो की स्किन और इन्हीं जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जेह में आहिन चावरन जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी के लॉक करे, ऐ चावरन जो खूबियों जल्द मां फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे, सिर्फ ट्रिम नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट, उनसा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती, हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: बहुत वो चीजें इनको खराब कर गई हैं जो नॉर्मल पॉलिटिशियन में नहीं होती हैं और ये भी चाहते हैं कि हम पावर भी एंजॉय करें जो वहाँ केपी में लोग बैठे हुए हैं और उसके अलावा ये धौंस और ये धक्का दही भी करें तो ये पॉसिबल नहीं है।
6: केपी में सबसे ज्यादा हाल ही में वाकया रिपोर्ट हुए हैं दहशतगर्दी के हवाले से। जब भी बातचीत हुई और दहशतगर्दी के हवाले से तमाम जो इशू मुफाद को दरपेश थे उस पर आपने बातचीत भी किया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं इन्हीं को इस्तेमाल करके केपी जो केपी की गवर्नमेंट है वो इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है सर?
5: देखें, लोकल लेवल पे तो हमने कल भी परसों भी उनको हाईलाइट किया कि हमारे पास शिकायत और इन्फॉर्मेशन है कि लोकल लेवल पे जो दहशतगर्द हैं उनको उनकी पार्टी और लोकल लेवल पे उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। उस पे जिस पे उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसको अफोर्ड नहीं करेंगे, यहां तक भी मैसेज आया कि आप हम बिल्कुल इसको ऑफिशियली डिसओन करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। इसी वजह से हम उनके साथ टेररिज्म से रिलेटेड एग्रीमेंट करना चाहते थे, जो एक सिंपल आप अगर वो पढ़ लेंगे वो जो 6-7 पॉइंट हैं उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें कहीं सियासत आती हो। अगर आपकी दहशतगर्दी के मुतालिक सोच और जहन क्लियर है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक मिनट भी लगाएगा उसको सोचने में, उसी वक्त साइन कर देगा। लेकिन इसका मतलब है कि आपकी सोच और आपकी जहनीत और आपके इंटरेस्ट कुछ और लोगों के साथ हैं जो दहशतगर्दी के साथ खड़े हैं, इसलिए आप वो नहीं कर रहे हैं।
6: आपने पॉइंट बड़ा क्लियर कर दिया कि सियासत के हवाले से आपने पूरी इजाजत दी है कि और तो सर आपकी मेजोरिटी का तो ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है कि आप शोहादा की फैमिली के साथ ज्यादती करते हैं, वहां पे आप एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए एक्टिविटीज करते हैं, तो फिर हुकूमत जो है इस हवाले से क्या अपडेट करेगी अगर वो ये एक्टिविटीज नहीं छोड़ते, तो फिर आपका अगला रहनुमा क्या है, आप उसको किस तरह?
5: देखिए, अगर वो इसी तरह दहशतगर्दी वाली चीजों में अच्छा, मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं कोई ये कहूं कि जी वो मुजाकरात नाकाम हो गए तो मैं उनको दहशतगर्दों के साथ लिंक कर रहा हूं। नहीं, ये बातें वो हैं जो उनके साथ हमने कल और परसों में की हैं। उसमें असद कैसर साहब ने कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा जवाब भी दिया है और इसीलिए मैं असद कैसर साहब को यही कह रहा था कि हम इसके ऊपर बैठ के अगर हम सारे एग्री करते हैं तो हम इसको साइन कर लेते हैं, ताकि ना हमारी तरफ से गलत फहमी रहे ना आपकी तरफ से गलत फहमी रहे। जिसपे असद कैसर साहब ने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें इसको साइन करना चाहिए, और उन्होंने कहा मैं सबसे पहले इस चीज को एज अ पाकिस्तानी, मुझे नहीं है कि मैं हुकूमत के साथ कर रहा हूं, हम एज अ पाकिस्तानी इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं कि हम इसमें बहुत क्लियर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनके इंटरेस्ट और बाकी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। आप आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है।
7: तो हुकूमत की क्या ये स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने भी लॉन्ग मार्च बंदे को उठाना था, उसने बताइए कि ईरान अमरीका के दरमियान,
5: ईरान अमरीका वाली बात, हाँ
7: हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान,
5: मैं जो पहला सवाल था वो क्या था? देखें, मैं हाँ एज अ गवर्नमेंट हमारा बड़ा क्लियर स्टांस था कि हम अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है हम उनको बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। उनको ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफा, दो दफा, तीन दफा कहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होती, हम नेशनल डायलॉग के लिए हमें बैठना चाहिए। लेकिन हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमें लॉन्ग मार्च से कोई घबराहट या कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि पूरा बंदोबस्त था। बिल्कुल फर्क था, हमारे तो उनका एग्रीमेंट हो गया था। एक सेकंड,
7: एक था सियासी और एक था दहशतगर्दी।
5: हाँ जी,
7: सियासी तौर पर मुजाकरात करने वाले तो वो थे जो جو آپ لوگوں نے اس ٹیم کے ساتھ کیے اور دہشت گردی کے مذاکرات کے لیے مین جو مینڈیٹ ہے جس میں آپ
5: سارے ہمارے لیے ہمارے پاس بھی وہی ٹیم تھی ان کے پاس بھی وہی ٹیم تھی.
7: یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کے ٹی اے کے وزیر اعلی ہیں دہشت گردی کے خلاف تو مینڈیٹ ان کے پاس تھا
5: تو وہ آئے نہیں ان کو جمعے کو بھی کہا کہ آئیں اگلے دن بھی وہ آئے نہیں. اب تو ہمیں بعد میں سمجھ آئی کہ ان کی انٹینشن کیا تھی. اگر میں انٹرسٹڈ ہوتا اور میں چیزوں کو ریزالو کرنا چاہتا اور میں کہتا کہ نہیں یہ تو دہشت گردی کے پوائنٹ ہے ان پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں آ کے سالو کر لیتا.
7: اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے نمائندوں کی طرف یہ جو ہے وہ ڈرافٹ چینج کیا گیا. کوئی فائنل ایسا ڈرافٹ
5: میں آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے صرف اس کمیٹی کے ممبر سے پوچھ لیں وہ آپ کو سارا کچھ بتا دیں گے. میں ایک سائڈ کہوں وہ دوسری سائڈ کی ہیں میں نہیں کچھ کہتا صرف ان سے پوچھ لیں وہ جو ان کو کہیں پی ٹی آئی والوں کو پوچھیں اپنے کمیٹی ممبر سے پوچھ لیں اس کے بعد میں کچھ نہیں کہنے کا. آخری سوال یار ایران ابھی پہلے ہمیں ونس فار آل یہ بندوبست کرنے دیں پھر اگلی بات کریں گے.
8: وفاقی وزیر
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. Super White Oil Free Beauty Cream کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
9: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے. ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم. اب اسکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے. تم اسٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی obviously میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے. تم کون سی یوز کرتی ہو؟
10: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے.
11: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم.
10: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری. اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن.
11: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے.
12: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: ऐ बेरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज ऐ डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेहे में आहिन चावरन जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बिहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: पहजो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
3: GFM 90.8।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: आप सुन रहे हैं
2: GFM 88
1: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

ॻाल्हियुनि जी नाकामी जो ज़िमेवार केपी जो वॾो वज़ीर आहे। अलाह न करे हिक ॿिए जान वई त सुहेल आफरीदी ज़िमेवार हूंदो। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी चयो त माहिदो तयारु थी चुको हो, 99% इतफ़ाक़ बि थी वियो हो। माहिदो सदर खे ॾेखारे वापसि आयुसि त सुहेल आफरीदी माहिदो तब्दील कराए छॾियो। फ़ैसिला सुहेल आफरीदी खे करणा हुआ त पाण अची वेहे हा, जेकॾहिं ख़बर हुजे हा त माहिदो वीटो कयो वेंदो त ॻाल्हियूं ई न कयूं हा। असां दहशतगर्दी जे मामले ते ॻाल्हियूं कयूं था त हू इनकार कनि था, इस्लामाबाद ते चढ़ाई करणु न ॾींदासीं।

केपी में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, 8 खारजी दहशतगर्द मारजी वाया। डीआई खान में दहशतगर्दन की मौजूदगी की गुज इतलाते ऑपरेशन कयो वयो। सिक्योरिटी फोर्सेज मूजिब ऑपरेशन में मारजी वेल फितने खारजन जा 3 कमांडर भी शामिल आहिन। मारजी वेल दहशतगर्दन वटां वॾे अंग में हथियार परॾेही करंसी भी हथाई आहे।

नौकोट में सिंध जी इम्कानी विरांगे ज़मीनन वसीलन ते कब्जे ऐं पाणी ते धाड़े ख़िलाफ़ रैली अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक ख्वाजा चौक खां प्रेस क्लब ताईं इहतिजाजी रैली कढी। अॻवाननि चयो त सिंध पाकिस्तान जो ख़ालिक आहे, सूबो सिंध खे बहितर सां लॻाए मुल्क खे नथो हलाए सघिजे। सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ साज़िशूं कामयाबु थियण न ॾींदासीं। सिंधूअ जे पाणीअ ते धाड़ो क़बूल नाहे।

सिंध पुलिस रुगो दावाऊं करण में पूरी धाड़ेल राज ऐं कबीलाई तकरारुनि जो ख़ात्मो न आणे सघी। लाड़काणो पुलिस गुज़िरियल ॾींहं ॾिठे जो गांगरा बिरादरी जे 5 ॼणनि खे क़तल कंदड़ हिकु ॿिए जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी। वाके जो केस मक़तूल रजब गांगरो जी भाउ सिकंदर गांगरो जे अॾनि सुञातल ॿिनि अणॼातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल। FIR में ॼाणायो वियो त जवाबदारनि अहसान गांगरो, अब्बास गांगरो, लाल खान गांगरो, रहीम खान, फिदा हुसैन, अयान, आमिर, यासीन, गुलाम मुस्तफ़ा, दोदो गांगरो ऐं ॿियनि पाणी तकरार तां 5 ॼणनि खे क़तल कयो। फायरिंग में रजब संदसि पुटु क़ुर्बान ऐं रियाज़ गांगरो समेत बिलावल गांगरो ऐं अब्दुल्ला बिरोही मारिजी विया हुआ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: बाय सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आवाज का। कृष्णा आपके हमारे दरमियान जो हमेशा कायम रहता है। मुझे बिल्कुल आप लोग मुझे सुन रहे हैं इस सखर सखर से लाइफ आप लोग मुझे सुन रहे हैं और जियो सिमिटी के पेज पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ हमारा जो शो है वो लाइव चल रहा है।

यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो कतरा कतरा बनकर हमारी जिंदगी को समंदर बना देती हैं, खुशियों का समंदर बना देती हैं। पानी वाला नहीं क्या आप बह जाए खुशियों का समंदर, जिसमें आपने ना बहना है ना बहकना है। तो मेरे साथ जरूर आप लोग शेयर करें कि आप इस नजरिए को कैसे देखते हैं, आपकी नजर में छोटी छोटी खुशियां कौन सी हैं। तो जी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन एक अच्छा सा ट्रैक मैं शामिल कर रही हूँ राहत फतेह अली खान की आवाज में आप लोगों के लिए, अपने तमाम लिसनर्स के लिए मैं प्रोग्राम में शामिल कर चुकी हूँ राहत फतेह अली खान और मोमिना की खूबसूरत आवाज में आफरीन आफरीन। तो मेरे साथ उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे आवाज के रिश्ते में एक

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: अवहां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी खाने पेजी स्किन के लियो एक नौ गिलो पेश आही वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवहां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवहां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वती का आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: तवाजो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तो कोई तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिला जारी आहिन 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA खास सहूलतूं स्कॉलरशिप्स मौजूद बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री जरे त DPD प्रोग्राम में सिर्फ ₹10,000 दाखला फीस आई फीस सेमेस्टर सिर्फ ₹60,000 हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशनड क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज मुकम्मल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप आई फिजियोथेरेपी ओपीडी जी बेहतरीन सहूलत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे याद रखो सीट्स महदूद आहिन तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस ओटी हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबितो 07115635642 ऐं 03108166111
4: यार मां छा कयां किथे वञा घर में वेठो आहियां पर ठीक ई न आहियां शायद मुझे जिंदगी लाए का दवाई नाहे थई
5: छो भला छा थियो तोखे साफ साफ बुधा मसलो छाए
4: यार हिक मसलो हुजे त बुधाया मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे न भुख सही लगे थी ऐं जे कुछ भी खावां थो त हजम ई नथो थे पेट फूक जी वञे थो हथ पेर सुन थी

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

Every song मैंने play किया था तमाल लीमा, तो ये बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा था ये song, तो इतने मतलब मैंने select किया जिनमें से मुझे इसकी tone, इसकी singing मतलब अच्छा अंदाज लगा. तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यही जो हमारे लिसनर थे एन जैफ की फरमाइश है, मैं ये वाला अरबिक सॉन्ग जो प्ले कर दूँ. मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग फरमाइश करते हैं कि भाई ये सॉन्ग प्ले कर दें, ये कर दें, तो इसी तरीके से आप लोग वो टॉपिक्स जिन पर आप लोग बात करना चाहते हैं मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि वो भी मैं प्रोग्राम में शामिल करती रहूँ. तो जी बिल्कुल इस वक्त टाइम भी हो चुका है 5:56 और हम लोग बात कर रहे थे छोटी छोटी खुशियों के ऊपर कि आपकी नज़र में क्या है, मतलब कि आपकी ज़िंदगी की वो छोटी सी खुशी क्या है, वो ऐसी क्या बात है जिससे जो आपको लगता है कि ये कोई ख़ास मौका या बड़ी कामयाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको लाइफ में छोटी खुशियों के लिए अपनी. अच्छा जी, जिसे हम छोटी मोटी मिसाल अगर मैं अपनी तरफ से, तो मैं जाहिर सी बात आप लोगों को यही बताऊंगी कि किसी के लिए सुबह की पहली चाय खुशी होती है. भाई किसी को होती है कि मैं सुबह से उठ के चाय पीनी है. जो टी लवर्स होते हैं उनको कहीं पे भी आप चाय दे दें वो पी लेंगे. आप उनको वो ये नहीं देखेंगे गर्मी सर्दी, उनको बस चाय की तलब है, वो टी लवर्स हैं वो तो पियेंगे. अब मेरी तरह कोई शौकीन होगा ना आइसक्रीम का, तो वो सर्दी में भी आइसक्रीम खाएगा, चॉकलेट्स खाएगा, जैसे मैं हूँ मैं मान जाती हूँ. इसी तरीके से किसी के लिए माँ की आवाज़, माँ बाप की आवाज़ होती है, घर का प्यार होता है, किसी के लिए बच्चों की हंसी होती है, और किसी के लिए दोस्त का मैसेज होता है, किसी के लिए तन्हाई में पसंदीदा कोई गाना या सिंगिंग सुनना होता है, किसी को पसंद होता है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है. तो आपके लिए वो खुशी छोटी सी क्या, इनमें से क्या हो सकती है जो आपका पूरा दिन अच्छा कर देती है, आपका टाइम अच्छा कर देती है. तो जी बिल्कुल अभी जो है टाइम हो चुका है, मतलब कि अब हम इसके बाद पहले मुझे टाइम लेना है आप लोगों से, फिर आप लोग बोलेंगे कॉमल ब्रेक लेती है, कॉमल जो है प्रोग्राम में बातें कम करती है. बातें मैं बहुत करती हूँ, बस ये है कि हमें ये ब्रेक भी लाजमी लेना है, इसमें भी तो आप लोगों के फ़ायदे की बातें हम बताते हैं. तो जी जाने जो मैं एक और अच्छा सा सवाल आप लोगों से करना चाहूँगी इसी मौजू पर, इसी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही छोटी छोटी खुशियाँ हैं. तो जब ब्रेक की बात आती है ना, तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो ब्रेक का टाइम तो आ रहा है ना, वो तो लेना है ना. तो जी बिल्कुल इस वक्त के अच्छा मैं आप लोगों से वो सवाल एक और सवाल मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि क्या खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए बड़ी वजह ज़रूरी. वही सवाल जो मैं आप लोगों से बार बार करती हूँ, मैं उसे अलग अलग तरीके से कर रही हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को समझ नहीं आए, तो मैंने कहा कुछ और तरीके से भी आप लोगों के साथ कर दूँ. कि मतलब खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कोई बड़ी वजह, बड़ी ही कोई बात तो ज़रूरी नहीं है ना भाई, छोटी छोटी कर सकते हैं ना. कभी कभी गेट टुगेदर दोस्त कर लेते हैं, मूड बन जाता है, चले जाते हैं. जैसे जब हम अपने मतलब के कॉलेज में थे, तो जब हमारी छुट्टियाँ होती थी कि मतलब समर वेकेशन है या विंटर वेकेशन है, तो हम लोग कॉलेज में मिलके गेट टुगेदर करते थे, इंजॉय करते थे. वो टाइम हमारा बड़ा अच्छा गुजरा था. यकीन आप में से भी किसी का ऐसा ही वक्त गुजरा होगा. तो छोटी छोटी छोटी खुशियों के लिए मतलब कि आप सिर्फ बड़ी वजह को अपनी लाइफ में अहमियत देते हैं खुश होने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, या आप छोटी छोटी बातों को भी अहमियत देते हैं जो खुशी का बायस होती हैं. तो एक तरह अच्छा एक मज़े की बात कि कहीं पर किसी की लड़ाई हो, कुछ हमारे अपना मैं बताऊं कि लॉजिक है लोगों की, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं पर कोई फाइट हो रही है, तो वो खुश हो रहे हैं कि यार लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमारा काम हो रहा है. अच्छा जी, तो टाइम हो गया है न्यूज़ ब्रेक का, इसके बाद आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँगी प्रोग्राम को, और कमर्शियल ब्रेक भी साथ में होगा.

M6 मोटरवे ठाहिण लाइ 30 सालनि खां आसरा ॾींदड़ वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ईंदड़ महीने सखर हैदराबाद मोटरवे M6 ठाहिण वारो कमु शुरू करण जो ऐलान। वफ़ाक़ी वज़ीर अलीम ख़ान चयो त 30 सालनि खां देर जो शिकार मोटरवे जी तामीर शुरू थियण पई वञे। M6 जहिड़ी तारीख़ी मनसूबे खे अमली शिकिल ॾियण जो मौक़ो मिली रहियो आहे। M6 मोटरवे सिंध समेत सॼे पाकिस्तान में वापारी सरगर्मियुनि खे हथी ॾींदो। M6 मोटरवे मनसूबो सिंध ऐं पाकिस्तान जी तरक़ीअ लाइ अहम साबित थींदो। केपीअ में सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाई, 8 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। डी आई खान में दहशतगर्दनि जी मौजूदगी जी ॻुझे इतला ते ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस मूजिबि ऑपरेशन में मारिजी वियल फितने ख़ारजनि जा 3 कमांडर बि शामिल आहिनि। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियार ऐं परॾेही करंसी हथाई आहे।

ईरान जा शर्त पूरा न थियण ताईं आबनै हुर्मुज़ न खुलंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाफ चयो आहे त ईरान जो मौक़िफ़ मुकमल तौर वाज़े आहे त अमरीका जेसि ताईं इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे में तय थियल सत ईरानी शर्तूं पूरियूं न कंदो आबनै हुर्मुज़ बंदि रहंदो। अमरीका खे समझणो पवंदो त मामले खे ड्रेग ॾियण जो वक़्तु ख़तम थी चुको, हिकु तरफ़ी मुतालबा तस्लीम करण जो दौरु हाणे नाहे रहियो।

सिंध पुलिस रुगो दावाऊं करण में पूरी धाड़ेल राज ऐं कबीलाई तकरारुनि जो ख़ात्मो न आणे सघी। लाड़काणो पुलिस गुज़िरियल ॾींहुं ॾिठे जो गांगरा बिरादरी जे पंज ॼणनि खे क़तल कंदड़ हिकु बि जवाबदार गिरफ़्तार न करे सघी। वाक़े जो केस मक़तूल रजब गांगरो जे भाउ सिकंदर गांगरो जी फ़रियाद ते अरिड़हं सुञातल ऐं ॿिनि अणॼातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल। FIR में ॼाणायो वियो त जवाबदार अहसान गांगरो, अब्बास गांगरो, लाल खान गांगरो, रहीम खान, फिदा हुसैन, अयान आमिर, यासीन, गुलाम मुस्तफ़ा दोदो ऐं ॿियनि पुराणे तकरार तां पंज ॼणनि खे क़तल कयो।

0: नवाबशाह शहर में वधंदड़ बदअमनी मंशियात के वाहपे खिलाफ़ शहरनि पारां एहतजाज। शहरनि प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे चयो त नवाबशाह में बदअमनी ऐं मंशियात जे सरेआम वाहपे शहरनि जी ज़िंदगी तबाह करे छॾी आहे। चोरियुनि ऐं फुर जे वाकियनि में बि वाद थी रही आहे। आई जी सिंध नोटिस वठी अमुन बहाल करायो। काज़ी अहमद में गुम थी वियल निगरी बेहोशी वारी हालत में हथ ज़ियाती जो ख़दशो ज़ाहिर। दोस्त मोहम्मद कॉलोनी मां पुरस्कार नमूने गुम थियल 13 वरनि जी निगरी घर ॿाहिरां बेहोशी जी हालत में हथ। वारसनि जो चवणु आहे त निगरी ॿ ॾींहं अॻु घर ॿाहिरां गुम थी वई हुई। जवाबदारनि खेसि नशो ॾेई ज़ियाती जो निशानो बणायो। पुलिस निगरी जी मेडिकल लाइ लेटर जारी करे छॾियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
5: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
6: Super White!
7: Sakran ki ho, to awaaz bhi Sakran ki hai.
8: Sunte raho GFM 90.8.

ये रिश्ता दुआ से जो चिका अब लेकर आवाज का तो जी बिल्कुल जहाँ आवाज वहाँ रिश्ता तो ये खूबसूरत सा एहसास का इजहार है ख्याल का ये रिश्ता जो अब लोगों से जुड़ा हुआ है अल्फाज आपकी आवाज मेरी। अच्छा जी तो अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से आगे की तरफ हम चलते हैं कि हमारे पास टाइम शॉर्ट रह गया है बहुत कम से कम होता जा रहा है ये दो घंटे कैसे गुजरते हैं आप लोगों के साथ।

ऐसे ही आप लेके सब टाइम गुजरते हैं और पता भी नहीं चलता बिल्कुल भी। तो जी 5 बजे स्टार्ट हो तो 7 बजने में कुछ ही मिनट जा रहे हैं, तो जो ये खत्म हो जाएगा फिर आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी सैटरडे एंड संडे। तो जी हमारे एक लिसनर से पूछा था कि आप डेली प्रोग्राम करती, तो जी भाई मैं डेली प्रोग्राम नहीं करती, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा कौन से, लेकिन उनका फिर लास्ट में कमेंट कर चुकी थी और मैं शो क्लोज कर चुकी थी अपना, इस वजह से तो मैं रिप्लाई नहीं दे सकी थी। जस्ट जो ना सैटरडे एंड संडे को ये शो आता है आवाज का रिश्ता और शाम 5 से 7 बजे तक सैटरडे एंड संडे पर। इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे चल के अगर टाइम मैनेज हुआ तो मैं वीकली आप लोगों के साथ ये शो फिर मतलब फुल वीक जो ये शो रख लिया करूँगी वीकली की जगह। ओके जी, तो अभी एक अच्छा सा ट्रैक प्ले करती हूँ आबदा परवीन की खूबसूरत सी आवाज़ में, यार को हमने जहाँ बचा देखा, शहरज़ाद ड्रामे का ये ट्रैक है, मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करेंगे, उम्मीद है कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे शो को।

की शक्ल सलमान से नहीं होती। प्लीज मैं इन बुतों को पूछ थोड़ी रही हूँ। पहले पहले अपने हाथ से बनाए हुए बुत से प्यार हो जाता, फिर अपने आप से इश्क हो जाता।

0: इश्क मांगता है, कोई मोहब्बत मांगता है, और जो ये सब कुछ नहीं मांगता वो ख्वाहिश का खत्म होना मांगता है।
1: कहीं आशिक नियाज
2: की बहुत डिफरेंट इंसान, मेरे साथ रहना आसान नहीं।
1: कहीं आशिक नियाज की सूरत
3: मुझे आसानियां पसंद नहीं।
1: सीना बिरयानी

हेलन से मैसेज किया है. हेलन से हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं. मीरपुर खास से, हाँ मीरपुर खास से हैं और लुन की खास से. अच्छा जी, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने प्रोग्राम को पसंद किया. और जो आपने फरमाइश की है ना, अगर ये पाकिस्तानी होता ना तो मैं प्ले कर देती. आपका पाकिस्तानी सॉन्ग आप मुझे लेकर भेजें, अगर मैं प्ले ना करूँ तो फिर आप कहिएगा. बस आप इंडियन को हटा दें, बाकी अरबी तुर्की जिस जबान का सॉन्ग कहेंगे कोशिश करके प्ले कर दूंगी. ठीक है,

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
1: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Supervibes Rice Collagen Beauty Cream,
6: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
7: सारे के सारे कलेप्स करने का पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज चीफ मिनिस्टर केपी. और कोई एक जान जाती है, ये क्लैरिटी के साथ, अल्लाह ना करे कोई एक जान जाती है, उसका जिम्मेदार सुहेल अफरीदी हो. इस चीज को उनको समझ लेना चाहिए. हर मुमकिन हद तक कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ. जो भी तौहीन अदालत की बनती है उस पर कहीं कोई किसी किस्म की नरमी नहीं की जाएगी. जो लोग अरेस्ट होंगे इस धरने के लिए.
8: कंहिंखे बि अमन अमान जी सूरत हाल ख़राब करणु न ॾींदासीं. सुहेल आफरीदी जो मक़सदु रुगो हिकु क़ैदी आज़ादु कराइणु आहे. अवामी तहफ़ुज़ जी खेसि का बि परवाह न आहे. सूबाई हुकूमत जी पहिरीं तरजीह शहरनि खे तहफ़ुज़ फराहम करणु हूंदो आहे, पर हुननि जी पॉलिसी रुगो दहशतगर्दीअ खे हथी ॾियणु आहे. सुतसमा वफ़ाक़ी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त पीटीआई वारा पंहिंजो बिटो मयार तब्दील करण लाइ तयारु न आहिनि. ही हर भेरे ॻाल्हियूं करे वरी यूटर्न वठंदा आहिनि. पीटीआई वारनि कॾहिं बि दहशतगर्दीअ जी मज़म्मत ऐं नेशनल एक्शन प्लान जी हिमायत नाहे कई.

पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा चयो आहे त गार्डन जी नाकामी जो सबब हुकूमती इसरार आहे। हुकूमत मुशावरत ऐं इतफ़ाक जो रस्तो अख़्तियार करण लाइ तयार न हुई। हुकूमती टीम मुलाकातुनि जी बहाली खां सवाइ ॿियो कुझु बि ॾियण लाइ तयार न आहे। केपी हुकूमत खे वफ़ाक़ी सरकार जी क़दमनि ऑपरेशन जी हिमायत लाइ मजबूर कयो वियो। पीटीआई जो मौक़िफ़ु हो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस हुजे। ॻाल्हियुनि वारी कमेटीअ जो मक़सदु पीटीआई बानीअ ताईं फौरी रसाई हो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मुलाक़ात। घरू वज़ीर पारां पीटीआई सां ॻाल्हियुनि जे हवाले सां ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्लाह बि वज़ीर आज़म सां फ़ोन ते राब्तो करे ॻाल्हियुनि में 1.5 लाख खां आगाह कयो। मोहसिन नक़वी सदर आसिफ़ ज़रदारी सां बि फ़ोन ते राब्तो करे अहम मामलनि ते ब्रीफिंग ॾिनी। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पिशावर पहुची गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी सां बि मुलाक़ात कई। पीटीआई जे लॉन्ग मार्च दौरान नमूनमान जी सूरत हाल बरक़रार रखण जे हवाले सां गौर वीचार। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी जाती इमरा में नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात। मुलाक़ात में मुल्क जी सियासी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। ज़रियुनि मूजिबि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ नवाज़ शरीफ़ खे हुकूमत अपोज़ीशन जी ॻाल्हियुनि बाबति आगाही ॾिनी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बि मुलाक़ात में मौजूदु हुई। M6 मोटरवे ठाहिण लाइ 30 सालनि खां असरा ॾींदड़ वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ईंदड़ महीने सखर हैदराबाद मोटरवे M6 ठाहिण वारो कमु शुरू करण जो ऐलान। वफ़ाक़ी वज़ीर अलीम ख़ान चयो आहे त 30 सालनि खां देरि जो शिकार मोटरवे जी तामीर शुरू थियणु पई वञे। M6 जहिड़ी तारीख़ी मनसूबे खे अमली शिकिल ॾियण जो मौक़ो मिले पियो। M6 मोटरवे सिंध समेत सॼे पाकिस्तान में वापारी सरगर्मियुनि खे हथी ॾींदो। M6 मोटरवे मनसूबो सिंध ऐं पाकिस्तान जी तरक़ीअ लाइ अहम साबित थींदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिपके चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट
5: सिंध के माथे का झूमर
6: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज़

0: नहीं करवाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि हमारे नए गेस्ट हैं तो सुल्तान अफजल की आपसे बात करवाएंगे। सुल्तान, आपको मैं अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड में खुश आमदीद कहूंगा, और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सामाईन से पहला पैगाम के तौर पर?
1: बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपको वेलकम करते हैं हमारे शहर फैसलाबाद में। तमाम सुनने वालों के लिए एक पैगाम है कि क्रिकेट लवर्स स्पेशली के उतार चढ़ाव जो है वो खेल का हिस्सा है, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करते रहना है। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो तो जायज़ है, लेकिन हमें जो है वो प्लेयर्स की ज़ातियात पर या उनकी ज़िंदगियों पर तो ऐसे अल्फाज या ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी या कहनी चाहिए जिससे उनकी दिलाज़ारी हो। तो इंसानियत की, और प्लेयर्स ज़ाहिर है वो भी इंसानी होते हैं, तो उनकी दिलाज़ारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हम बहुत ज़्यादा ऐसा देख रहे हैं कि बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और जिस तरह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए गए, वहाँ पर ज़ाहिर है फैंस जो हैं वो प्लेयर्स को देख कर, अपने सुपर स्टार्स को देख कर, उन्हें खुद को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये जायज़ है उनके लिए भी कि वो उनसे मिले, उनसे रूबरू हों। लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हर चीज़ के, अगर आप उन प्रोटोकॉल से बाहर जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा तकलीफ का शिकार प्लेयर्स भी होंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, बाकी ये कि सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें।
0: बड़ी अच्छी बात की है सुल्तान आपने। यकीनन जो एक प्लेयर है उसके इख्तियार में सब कुछ नहीं होता, यकीनन कुछ मैनेजरी चीज़ें भी हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेज करता है, प्लेयर्स के कुछ प्रोटोकॉल हैं, वो हर वक्त हर किसी को अवेलेबल हो भी नहीं सकते। फिर वही बात है कि आप क्रिकेट पे बात करें, क्रिकेट में अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा ठीक है आप उस पर तनकीद करें, और अगर अच्छा कर रहे तो उसकी तारीफ भी फिर करें। और जहाँ तक ज़ातियात का ताल्लुक है वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, पर मैं ज़रा अपनी राय रखूंगा एफ एस को इसमें शामिल करने से पहले। वो ये है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हर कोई सुबह उठ के खिड़की खोल के कहता है कि मैं ओवरनाइट हीरो बन जाऊँ, मैं ओवरनाइट शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, तेंदुलकर या बोथम या कपिल देव, कुछ भी जो बन जाऊँ। या फिर अगर हम बात करते हैं इसी तरह किसी भी फील्ड की, कॉमेंट्री की भी, फौरन हर कोई सोचता है कि मैं टॉनी ग्रेग हो जाऊँ, मैं हसन जलील हो जाऊँ, मैं वो हो जाऊँ। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट्स आ गए, और इसकी एक वजह भी ये है कि हम लोग थोड़े जल्दबाज हो गए हैं, और फिर सोशल मीडिया पर बैठे बैठे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज़ का क्राइट एरिया नहीं देखते हम कि किसी चीज़ को लिखने के लिए क्या एथेंटिसिटी होनी चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। यकीनन मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस बहुत आई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं जो पहले सामने नहीं आती थी, ऐसे टैलेंट भी सामने आ जाते हैं जो सिर्फ रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के ज़माने में सामने नहीं आते थे, मगर ऐसे

0: ने बुरे गुजर गए तो उसके घर पे भी बात करना और तरह तरह की बातें करना ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एफएस, इससे पहले कि हम सीरीज की बात करें, इसी हवाले से जो हम दोनों ने बात की, आपके थॉट्स?
1: सबसे पहले बहुत शुक्रिया राणा अशफाक, आप गाए बगाए मुझे मदऊ करते रहते हैं अपने इस प्रोग्राम में, और आपके इस प्रोग्राम की वसाकत से आपके सामईन की गोश गुजार जो है टूटे फूटे अल्फाज मुझे करने का मौका मिलता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि प्रोफेशनलिज्म जो है उसमें प्लेयर्स को भी देखना चाहिए कि किस हद तक शायकीन क्रिकेट जो है वो उनको चाहते हैं और कितनी भूख होती है एक हीरो को अपने आंखों के सामने देखने की या उससे जो है वो मिलने की। तो उसके साथ साथ जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको भी चीजें लर्न करनी चाहिए, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, और हम बड़े जज्बाती से लोग हैं, बड़ी जज्बाती कौम है, हम चीजें देखने सोचने के बगैर जो है वो शॉर्टकट्स इख्तियार करके जो है वो एक्शन जिसका हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले बस उसको कर ठहरते हैं या कर गुजरते हैं। तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं इन द एंड वो जब सामने आते हैं तो देन जो है वो चीजें बड़ी बिखरी हुई दिखाई देती हैं, दैट इज नॉट अ गुड वे। और इसमें मैं थोड़ा सा ये भी कहूंगा कि पीसीबी जो है कम से कम उनको भी देखना चाहिए कि आपके एक सबसे बेहतर बैटर जो पिछले 5-7 साल से आप कह सकते हैं कि आपके एक कलीदी बैटर हैं, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है तकनीक के लिहाज से। बाबर आजम की अगर बात की जाए, बहुत उन पे तनकीद हुई कि उन्होंने जिस तरह मोबाइल पटका शायक का इस्लामाबाद के ग्राउंड में, और वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा पीसीबी को भी टेक केयर करना चाहिए इन चीज़ों को कि इतना आपका एक हीरो खिलाड़ी है और शायकीन की उस तक रसाई किस तरह मुमकिन हो गई। कुछ प्रोटोकॉल्स तो होने चाहिए, सो एवरीवन शुड प्ले देयर पार्ट एंड व्हेन वी गो इन अ स्मूथ वे देन थिंग्स सीम टू बी मूविंग वेल।
0: बिल्कुल एफएस, मैं समझता हूँ। दूसरा, एट द सेम टाइम मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी चाहने वाले हैं वो यकीन अपना देख रहे होते हैं कि हमसे फलां जो है वो अच्छे तरीके से नहीं मिला या शाइस्तगी से नहीं मिला, मगर आप देखिए कि अगर आप खुद को उनकी जगह रखें, आपका उनका काम क्रिकेट खेलना है, दैट इज देयर प्रोफेशन प्लेयर्स का ना, और आपका मिसाल के तौर पर कोई ऑफिस है, काम है जहाँ पे आप बैठकर अपना बिजनेस डील करते हैं, या आप मिसाल के तौर पर कोई अगर टीचर है वहाँ जब वो पढ़ा रहा है, उन औकात में अगर 8-10-20 बंदे एकदम से आ जाएं और उसको टीचर को पीरियड के दौरान डिस्टर्ब करें तो किस तरह से बिहेव करेगा? 1, 2, 8, 10 आखिरकार वो भिन्ना जाएगा और ये कहेगा कि भाई मैं मेरा काम यहाँ पढ़ाना है आपको, मैं जब मेरा वक्त होगा फाजिल या मेरा जो जब मैं मसरूफ नहीं हूँगा तो उस वक्त मैं ज़रूर आपको मिलूंगा और प्रोटोकॉल दूंगा। तो इसी तरह जब वो कोई खेलने के लिए बैटिंग करने के लिए बॉलिंग करने के लिए जा रहा है दौरान मैच ग्राउंड में, तो मैं समझता हूँ ये एक जो पढ़ा लिखा आदमी है, एक आदमी जो शौर रखता है, तो उसे इन बातों से नाराज या मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ हमारे भी हीरो थे वसीम अकरम, ये इमरान खान, ये सारे लोग हम उनको चाहते थे, मिले भी हैं जब मौका मिला जिंदगी में, अल्लाह ने उनके साथ बैठा के कॉम्प्लीमेंट्री भी करवाई बहुत सारों के, लेकिन उसका बेहतर तरीका यह कि आप किसी तरह अप्रोच करें थ्रू देयर मैनेजर्स, थ्रू देयर प्रॉपर चैनल्स, कहीं पर जाके आप मुलाकात रख लें, थोड़ा सा वक्त ले लें, एक भागते हुए दौड़ते मिलने का भी आपको क्या मजा आएगा, जस्ट फॉर अ पिक्चर। मैं समझता हूँ इन चीज़ों पर ज़रा मैं समझता हूँ देखना चाहिए और इसका एहसास करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ खासतौर पर जो बच्चे होते हैं या जो आपके क्रेजी फैन होते हैं उनका दिल भी टूटता है, वो बहुत को बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे होते हैं और आप हैं भी माशाल्लाह, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ जिम्मेदारी बनती है, आप भी कुछ इस तरह से रिप्लाई करें, इस तरह समझाने की कोशिश करें कि दिल ना टूटे, तो ये दोनों तरफ हमारा मैसेज जाना चाहिए। बहरहाल अब हम बात करते हैं, फिलहाल ये भी हमारे सामने इनको मैं बताता चलूँगा, ये प्रोग्राम आप फैसलाबाद से बराह रात सुन रहे हैं और इन दिनों हम लोग फैसलाबाद में जो अंडर 19 सीरीज हो रही है या इवेंट हो रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के दरमियान, तो उसकी कमेंट्री के लिए, टीवी कमेंट्री के लिए यहाँ मौजूद हैं और हमने फैसला किया यहीं से बराह रात साहब से मुखातब हुआ जाए। तो पहला मुकाबला पाकिस्तान की टीम सुल्तान हारती है, 117 रन बांग्लादेश करती है और पाकिस्तान सिर्फ 87 पे आउट हो जाती है और 30 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान की टीम हार जाती है तो और कहीं ना कहीं ये लगा कि बैटिंग में कुछ हमारी बैटिंग कुछ ब्रिटल है, बैटिंग में कुछ स्पीचेज हैं, कुछ चिंक्स हैं, कुछ कमियां हैं, और साथ साथ जो है वो ये भी लगा कि हम जो रिक्वायर्ड रेट था उसको भी मैच नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास विकेट्स तो

0: आखिर तक मौजूद थी उस मैच में, लेकिन सेकंड मैच में फिर हमने कम बैक किया अच्छा और 125 चेज किए जबकि तकरीबन एक ओवर का खेल बाकी था। तो इन दोनों मैच की कारकर्दगी को आप किस तरह से समअप करेंगे हमारे सुनने वालों के लिए, और अगले मैच में क्या उम्मीद देखते हैं पाकिस्तान की टीम से इस इवेंट में?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये इनिशिएटिव लिया गया है कि ट्राई नेशन सीरीज को मुनाकद कराना। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेली जानी चाहिए और ये इन लड़कियों के लिए, इन बच्चों के लिए बहुत खुशाइन भी है और बहुत फायदेमंद मुफीद भी है। बात करते हैं पहले दो मैचेस जो हमने विटनेस किए हैं यहाँ पर। जाहिर है पाकिस्तान की टीम लैग कर गई, बॉलिंग बड़ी अच्छी उन्होंने की, फील्डिंग भी उनकी अच्छी नजर आई। फील्डिंग आपको पता है पाकिस्तान की और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में एक मसला रहा है हमेशा ही से, तो फील्डिंग पे इतनी ज्यादा बात मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए, वो जाहिर है वक्त के साथ साथ बेहतर हो ही जाएगी। लेकिन बॉलिंग उन्होंने बड़ी अच्छी की, पहले बांग्लादेश को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया 117 रन पर, लेकिन जब बैटिंग का टाइम आया वही पैनिक बटन दबा, बीच में बहुत ज्यादा डॉट्स खेले गए जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हुआ, रन रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया और इंडियन पाकिस्तान 30 रन के बड़े मार्जिन से 117 जैसे छोटे से टोटल में हार गया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक ही दिन में कमबैक किया श्रीलंका के खिलाफ, हालांकि रन थोड़े ज्यादा बन गए थे, 125 बन गए थे जी, बांग्लादेश ने 117 बनाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आगाज किया बैटिंग में वो क्लियर डिफरेंस दिखाई दिया। उसकी वजह से ऑलमोस्ट पावर प्ले में मैच पाकिस्तान की साइड में आ गया था। फिर थोड़ा सा दरमियान के ओवर्स में स्लो ओवर रेट हो गया, ओवर रेट तो नहीं कह सकते, रन रेट जो है वो थोड़ा स्लो रहा, उसकी वजह से ये मैच थोड़ा करीब चला गया, वरना पाकिस्तान बड़े अच्छे मार्जिन से और बड़े आराम से मैच जीत लेता। लेकिन जिस तरह से आगाज मिला पाकिस्तान को, उनकी कोमल खान ओपनर, उन्होंने ऑलमोस्ट मैच को वन साइडेड कर दिया, बड़ी अच्छी वापसी की है। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि टैलेंट जो है वो अपकमिंग स्टार्स हैं पाकिस्तान में, ना सिर्फ बॉयज में बल्कि लड़कियों की क्रिकेट में भी। तो इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद करते हैं।
0: बिल्कुल अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और यकीनन ये जो क्रिकेटर्स हैं हमारी वो मायूस नहीं करेंगी। पर आपको बताते चलेंगे इस ट्राई सीरीज में कल एक और मुकाबला होगा जब दो मेहमान टीमें आपस में टकराएंगी, बांग्लादेश और श्रीलंका। उन पर भी यकीनन हमारे सुनने वालों की नजर है जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं, क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं। अभी हमारे पास पहले ब्रेक में जाने से पहले 5 मिनट का वक्त बाकी है, और जब भी वेस्ट इंडीज की क्रिकेट पर बात करनी हो तो मैं हमेशा FS की तरफ देखता हूँ, क्योंकि इनकी बड़ी फेवरेट टीम भी रही है वेस्ट इंडीज, और माजी के खिलाड़ियों को बड़ा लाइक भी करते हैं, और माइकल होल्डिंग से लेके वेव रिचर्ड्स तक इनकी दिलचस्पियां हैं। तो दो मैच हार गई वेस्ट इंडीज, ठीक है, पहले मैच में भी उन्होंने अच्छे रन किए थे जो इंडिया ने चेस कर लिए, सेकेंड मैच में तो 405 रन किए थे जो इंडिया ने चेस कर लिए, मगर कल 352 रन FS जिस तरह से चेस किए, और शाय होप ने जो बैटिंग की है इंडियंस के खिलाफ इंडियन कंडीशंस में, तो क्या कहेंगे। मैं समझता हूँ हार गई है दो मैच, लेकिन तीसरा मैच जीतकर कहीं ना कहीं उन्होंने दिल जीते हैं वेस्ट इंडीज के, और टीम इज गेटिंग बेटर, वेस्ट इंडीज की टीम बेहतर शेप में लग रही मुझे।
2: बिल्कुल राना शफाक, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, और जिस तरह की कन्विक्शन दिखाई दी कैरेबियन स्टफ में, 351 रन उन्होंने जिस तरह चेज किए, दैट वाज टिपिकल कैरेबियन स्टफ, और शाय होप की जितनी तारीफ की जाए कम है, उनका रिकॉर्ड जो है वो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। मे बी कई नजरों में वो इतने हाईली रेटेड बैटर ना हों, बट मैं ये समझता हूँ कि उनको जो फैब फोर कहते हैं या फैब फाइव कहते हैं उनमें शामिल करना चाहिए जिस किस्म का उनका रिकॉर्ड है, और अब तो उनकी 20 से ऊपर 21 सेंचुरियां हो चुकी हैं ODIs में, एंड उनके साथ साथ जिस तरह आमिर जांगू खेले हैं, उन्होंने एक सेंचुरी और दो फिफ्टियां की हैं, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट 67 की उन्होंने इनिंग्स खेली लास्ट मैच में जब उन्होंने बीट किया इंडिया को, तो दैट हैज बीन अ प्लस पॉइंट, और कहीं ना कहीं जाके थोड़ी सी उम्मीद बंधी है वेस्ट इंडियन कैरेबियन स्पोर्टर्स के लिए कि कैरेबियन जो है उनके अंदर अभी भी कन्विक्शन है, और हमेशा से बाउंड्री हिटर्स रहे हैं, बाउंड्री लगाना उनके लिए कोई मसला नहीं रहा, उनके ये ट्रेडिशनल क्रिकेट है और उसको बरकरार रखा है। और दूसरी जानब अगर बॉलिंग की बात की जाए तो कैरेबियन बॉलिंग में जेडन सेल्स नू, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और जोसेफ अलजारी जोसेफ हूँ या दूसरे जोसेफ जो हैं शिमार जोसेफ, उनकी बॉलिंग जो है वो बड़ी इंप्रेसिव रही है। यस एट टाइम्स उन्होंने बॉल को स्प्रे किया, इधर उधर थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने चले गए, और आप जानते हैं कि इंडियन बैटर्स के अगेंस्ट जब आप इंडियन कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर जवाब जो है वो पूरी दुनिया देखती है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। लेकिन पिच जो थी खासतौर पर पहले मैच की जिसमें 406 रन चेज हुए, आई वुड लाइक टू क्रिटिसाइज दैट बिकॉज दैट वॉज टोटली अ रोड, जिस तरह हाईवे पे आप खेल रहे हैं बिल्कुल कोई दो साइड ट्रैक था और उसमें कोई वियर एंड टेयर, नथिंग हैपेंड इन द एयर और ऑफ द सर्फेस, और इतनी आसान जिंदगी थी बल्लेबाजों की कि राणा शफाक मेरा और आप जैसे कमेंटेटर्स का भी दिल कर रहा था कि हम भी बल्ले उठाएं और पिच पर चले जाएं। तो इस किस्म की पिचेस जो है वो भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉन्टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रू क्रिकेट लवर्स है ना वो छक्के चौकों के साथ साथ द कैट एंड माउस बिटवीन बैट एंड बॉल जो है उसको भी देखना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा कम दिखाई दिया। यस एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवर्टाइजिंग ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा आई वुड से कि थिंकिंग होगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन दैट वाज मिसिंग द कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल, ये होना चाहिए किसी भी सीरीज में, क्योंकि ये किसी भी सीरीज की खूबसूरती होती है।
0: बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने तजिया किया है, और मैं समझता हूँ कि पूरी दाद देनी चाहिए वेस्ट इंडीज को जिस तरह से उन्होंने चेस किया, और होपफुली कि इंडियंस अब ज्यादा कंपेटिटिव और अच्छी विकेट्स बनाएं और हमारी आवाज उन तक पहुंचे। बहरहाल प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में GAFM रेडियो नेटवर्क पर एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो गया है, जब ब्रेक से लौटेंगे तो फिर जो पाकिस्तान श्रीलंका एंड इंग्लैंड ने पाकिस्तान को कवर करना है उसके हवाले से हमारे दोनों मेहमानों के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक ए ब्रेक एट GAFM रेडियो नेटवर्क।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: होती है। मिसाल के तौर पे अगर आज मैं चीफ सिलेक्टर हूँ तो हो सकता है मुझे किसी खिलाड़ी में ऐसा टैलेंट नजर आए जो कल आने वाले चीफ सिलेक्टर को ना नजर आए, या मुझसे जो पहले चीफ सिलेक्टर था उसे ना नजर आया, उसने किसी और एंगल से देखा हो। मगर जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस अपनी बात करूँ तो मैं हसन नवाज को शायद टेस्ट मैच खिलाऊँ, हालांकि कोई सिलेक्टर मुझसे एग्री नहीं करेगा। मैं भाई आपके जो थे वो रजाउल्ला, इन जैसे दो तीन हिटर ऊपर होते वो छक्के मार दे शायद हमें एक टेस्ट मैच ही जीत जाते। तो सिर्फ ब्लॉकिंग ही मतलब थोड़ी, जब आप ब्लॉक कर ही नहीं पा रहे तो शॉट को शॉट ही मार लो। तो ये सारी चीजें आप डिफरेंट तरीके से सीखा देखते हैं लोग चीजों को। अगर न्यूजीलैंड का भी टेस्ट मैच में ब्रेंडन मैकलम से ओपनिंग ना करवाता, अगर हमारे हमारी मेंटेलिटी होती और ब्रेंडन मैकलम ने दुबई में जो है वो टेस्ट मैच जिताया डबल सेंचुरी करके पाकिस्तान के खिलाफ, और इंडिया के खिलाफ 225 रन बनाए टेस्ट मैच में इंडिया में, और फिर 54 गेंदों पे उन्होंने टेस्ट की सेंचुरी मारी, मिस बॉल वेव रिचर्ड्स को उन्होंने कहा बाय बाय। तो बात ही वो टेस्ट मैच ही था ना भाई साहब। तो खाली ये बातें करना कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमें लेके जाती हैं। तो हर बंदे की एक सोच अलग होती है, हर बंदे की सिलेक्शन अलग होती है, हर बंदे का पसंदीदा क्रिकेटर गुलूकार या एक्टर अलग हो सकता है, लेकिन असल में देखना चाहिए कि प्राइड एरिया क्या है। तो इसको अगर आप देख कर चलेंगे तो मेरा ख्याल आपको तकलीफ नहीं होगी और आप बेहद तनकीद से बचेंगे। बहरहाल क्विकली हम मूव करते हैं। सुल्तान, अब श्रीलंका की टीम आ रही है, श्रीलंका भी कोई बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो इंग्लैंड से श्रीलंका में भी पिछले दिनों हारा और अब इंग्लैंड गए थे वहाँ भी हारे हैं, T20 में भी, वनडे में भी, उससे पहले टेस्ट मैच भी कोई इतने से नहीं खेल रहे थे। हम तो तीनों टेस्ट मैच वहाँ हार गए, वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट मैच हम जीत गए थे, और जो लास्ट पाकिस्तान और श्रीलंका की हुई थी सीरीज वहाँ भी श्रीलंका हमसे अच्छा खेला था, वो जीत गया था। लेकिन अब बहरहाल पाकिस्तान की होम कंडीशन है और साथ साथ श्रीलंका तो एशियाई की टीम है, इंग्लैंड को वनडे में ज्वाइन करना एक ट्रायंगुलर इवेंट होगा। तो ये जो ट्रायंगुलर सीरीज होगी उससे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका की जो T20 सीरीज है टेस्ट में, मैं FS से बात करूंगा। तो क्या कहते हैं, इसको किस नजर से देखते हैं?
1: देखिए राणा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए ख़ासतौर पर T20 सीरीज में अच्छा परफॉर्म करना, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की टीम स्पेशली वनडे क्रिकेट में, और टेस्ट मैच में तो है ही, वनडे क्रिकेट में भी पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो बड़ा तेज़ी से नीचे गया है। और लास्ट टाइम जिस तरह आपने मैंशन किया श्रीलंका के साथ जब सीरीज़ हुई थी 1-1, तो पाकिस्तान की टीम शिकस्त सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पर कंडीशंस भी पाकिस्तान को फेवर करेंगी और बहुत सारी और जो ऐसे नकात हैं जो पाकिस्तान के फेवर में होंगे, यहाँ पर परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिनको आपने बहुत हाईली रेट किया हुआ है, उनको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और फिर इंग्लैंड के खिलाफ जब ट्राई सीरीज होगी श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान के, उसके लिए पाकिस्तान का ये सीरीज जीत कर उस सीरीज में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर भी हार जाएंगे फिर जाहिर सी बात है आपका मोराल जो है वो अगली बड़ी सीरीज के लिए बहुत नीचे रहेगा। फिर इंग्लैंड जैसी टीम जो इस वक्त अपने पीक पे है, अपने रूज पर है, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं उनके पास, तो आपको उनसे लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए स्पेशली कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई होना है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान को 3-0 से ये सीरीज जीतनी है।
0: यकीनन हम सब भी उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान इस सीरीज को जरूर जो है वो 3-2 से अपने नाम करे। FS ब्रेक में जाने से पहले हमारे पास 3 मिनट का कोई वक्त बाकी है। टेस्ट सीरीज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान क्या देखते हैं, पाकिस्तान को टेस्ट में क्या करना चाहिए? वो लीथल बॉलर नजर नहीं आते जो रन थ्रू कर जाए किसी टीम की बैटिंग को। स्पिनर्स पे हमने जब मिसबाह कैप्टन थे इनिसार के और उन्होंने परफॉर्म भी किया, और उनके साथ चाहे उमर गुल थे, जुनैद खान थे और भी जो पेसर्स आते गए वो परफॉर्म करते रहे और पाकिस्तान जीता रहा और टेस्ट में नंबर 1 भी बना, थोड़े वक्त के लिए बना मिसबाह की कप्तानी में। अब उस खोए हुए मयार को लाने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती रहती है कि स्पिनर्स से स्पिन विकेट बना ली जाए, वो कर लिया जाए, वो करे, बट नथिंग इज वर्किंग इन अवर वे। ये स्पिन बना के भी उल्टा में वेस्ट इंडीज से हार गए।
2: जी हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जो नेक्स्ट मंथ सीरीज होने जा रही है दो टेस्ट मैचों की, श्रीलंका के अगेंस्ट एक टेस्ट जो है वो 9 को है और दूसरा 17 को, तो उसमें आई थिंक शायद हम जीत भी जाएं स्पिन विकेट्स बना के, साजिद खान एंड ऑल द स्पिनर्स मे जस्ट कम इन टू प्ले, नुमान अली। और उसके अलावा जो हम चीज़ें लैक कर रहे हैं वो है हमारा एटीट्यूड, और टेस्ट के लिए हम मेंटली तौर पर तैयार नहीं है, हमारे प्लेयर्स का जो टेम्परामेंट है वो टेस्ट खेलने वाला नहीं है। अब देखिए मोहम्मद रिजवान बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं साइड में, लेकिन आजकल जिस किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, जितनी मायूस कुन उनकी बैटिंग वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाली सीरीज में देखने को मिली है, दैट वॉज जस्ट शेमफुल टू से द लीस्ट, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने डिफेंस किस तरह करना है, सीधी सीधी गेंदों को भी डिफेंस नहीं कर पा रहे थे, ऑफ द फ्रंट फुट बैक फुट कहाँ पे उन्होंने जाना है, आगे जाना है या पीछे जाना है, लेंथ पिक करना उनको भूल ही गया है, तो उनका फुटवर्क जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, बड़े ऑफ कलर दिखाई दिए हैं। और इमामुल हक जिनको हम बड़ा टेक्निकली स्ट्रांग समझते हैं और हाईली रेट भी करते हैं, मतवातर टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो भी सवालिया निशान है, एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेज अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से देखने को मिली हैं, लेकिन कंटिन्यूटी जो है वो लैक कर रही है, दैट इज द थिंग कि कंटिन्यूसली उनको परफॉर्म करना चाहिए। बाबर आजम शेल में, आई डोंट नो व्हाई उनको शेल में होना नहीं चाहिए, जितनी अच्छी उनकी टेक्निक है, जितनी सलाहियत के मालिक हैं, वो सलाहियत अपनी दिखा नहीं पा रहे, खास तौर पे टेस्ट मैचेस में। सलमान अली आगा मुसलसल खेल तो रहे हैं, बट मे बी फ्यू वुड डिसएग्री, आई डोंट थिंक ही इज अ टेस्ट प्लेइंग मटेरियल। और उसके साथ साथ जो है रजाउल्ला हूँ या एक दो और यंगस्टर्स जो है उन्होंने प्रॉमिस शो किया है, पर जो चीज आप कह रहे हैं कि बॉलिंग में वो कन्विक्शन, वो लीथलनेस, वो एंथुसियाज्म जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, जहाँ पे हमें वर्क करने की जरूरत है, खासतौर पर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। हमारे शहीन शाह अफरीदी हैं, वो भी 4 ओवर्स के बॉलर रह गए हैं, टेस्ट मैचेस में जो है वो लंबे स्पेल करने वाले दिन उनके गए हैं और उनकी पेस भी कम हुई है, तो ये चीजें जो है ये कंसिडरेशन में आएंगी और इन पे वर्क करने की जरूरत है और टाइम लगेगा चीजों को बेहतर होने में, अब टाइम लगेगा। जिस हद तक हम फ्लॉप हो चुके हैं टेस्ट मैचेस में, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में, तो इसमें वापसी जो है वो यकीनन वक्त लेगी, ये इम्तहान है बोर्ड के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी, और थिंकिंग टैंक के लिए, कोचिंग के लिए, एवरीवन, क्योंकि इंटरेस्ट लेवल जो हमारे लोगों का है वो भी बहुत कम हुआ है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। कुछ थोड़ी सी उम्मीद नजर आई थी एक टेस्ट जब हम जीता था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद जो परफॉर्मेंस हमने इंग्लैंड के खिलाफ दिखाई है वो बहुत मायूस कुन थी, और इतनी मायूस कुन थी कि आप ये देखें कि प्रिडिक्ट कर रहे थे लोग, स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे लोग कह रहे थे कि ये 3-0 होगा, पाकिस्तान आर नॉट द टीम दैट यूज्ड टू बी 15-20 इयर्स बिफोर। तो इस किस्म की तनकीद जब हो रही होती है तो दैट इज अ कंसर्निंग थिंग, और इस देखें वक्त लगेगा, जिस तरह मैं कह रहा हूँ इस पर काम करने की हर एक को जरूरत है, और हर इंडिविजुअल जो है वो जब अपनी इसलाह करेगा और कोशिश करेगा कि मे बी आई एम द वन हु नीड्स टू टेक दी इनिशिएटिव, देन मे बी थिंग्स कैन गेट इन अ बेटर वे।
1: जी हाँ दोस्तों, देखना होगा कि ये चीजें बेहतर होती हैं कि नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी हम जीए एफएम रेडियो नेटवर्क पर एक ब्रेक लेते हैं और बस फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड में। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।

0: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हेल्थ इज वेल्थ, जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो, होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्ट

0: अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसको अभी भी कंटिन्यू किसी हद तक रखा हुआ है। पाकिस्तान के नाम से भी मंसूब की जाती थी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, लेकिन अब वो है जो रिसेंट कुछ सालों में वो नहीं देखने को मिलती। पाकिस्तान जो है वो लो से लो लोअर होता गया है। आई होप के विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटर हो जाएंगे, बट इट विल टेक टाइम। और वेस्ट इंडीज एक वाइट टीम है जिसको मैं समझता हूँ कि दे कैन सरप्राइज ऑन द गिवन डे, बट जिन टीमों का आपने जिक्र किया राना इशफाक, साउथ अफ्रीकन टीम अपने होम कंडीशन में दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस, दे आर गोइंग टू बी वेनमस। आपको बता रहा हूँ, अगर वो चौक ना करें, जो चौकर्स का थप्पा लगा हुआ है उनके नाम के अगेंस्ट, वो उसको वो बैक भी करते हैं और उसको वो जो है वो जस्टिफाई भी करते हैं मोस्टली। लास्ट वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि वो सेमीफाइनल में जाके हार गए थे और सेमीफाइनल में वो 99 में भी हारे, तो बड़े मुकाबलों में नॉकआउट स्टेजेस पे जाके आईसीसी के इवेंट्स में साउथ अफ्रीकन्स जो हैं वो मोस्टली चौक कर जाते हैं, भले जितनी भी अच्छी फॉर्म में हों, जितने भी अच्छे स्टार्स के साथ खेल रहे हों, तो ये एक चीज़ है। और दूसरी जानब अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बड़े इवेंट्स में आईसीसी के इवेंट्स में जो है वो टॉप परफॉर्मर रहे हैं, 6 वर्ल्ड कप उन्होंने जीत रखे हैं। और आजकल जिस किस्म की क्रिकेट इंडिया खेल रही है तो आप इंडिया को भी कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते, दे आर ऑल्सो गोनो बी पैरेलल टू ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। और इन तीन टीमों के दरमियान जो कशाकश रहेगी वो काबले दीद होगी यकीनन आने वाले वर्ल्ड कप में। बहरहाल वर्ल्ड कप की तैयारी इंग्लैंड भी करेगी, न्यूजीलैंड भी करेगी और देखने का ज़रूर मज़ा आएगा। और जो कॉन्टेस्ट है वो इन तीन टीमों के मबेन जो है वो काबले दीद रहेगा, मैं ये समझता हूँ।
1: जी हाँ यकीनन इंग्लैंड साउथ अफ्रीका जो है वो, उसके अलावा आपने वेस्ट इंडीज़ का भी जिक्र किया, न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम हो सकती है क्योंकि 2019 में बहुत अच्छा खेले थे और बहुत करीब भी थे जीतने के वर्ल्ड कप। हमारा यकीन बींग पाकिस्तानी, पाकिस्तान से उम्मीद करनी चाहिए कि तब तक टीम शेप में आ जाए क्योंकि अभी कम से कम साल बाकी है, मगर उस की ट्रॉफी की रूनमाइयाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। ब्रायन लारा बड़े बड़े ग्रेट्स को जो है वो इन्वाइट किया जा रहा है और आईसीसी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अभी से कर रहा है। बहरहाल आज के स्पोर्ट्स राउंडअप में मैं बड़ा मशहूर हूँ मेरे साथी पलक शेर का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और आपके साथ अपने प्रीशियस थॉट्स उन्होंने शेयर किए। इसी तरह सुल्तान अफजल का, तो उन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के लिए। अपने मेज़बान राना इशफाक को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीक बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जैसा मैं ऑलवेज कहता हूँ प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले के वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, अभी ज़िंदगी पड़ी है तो अच्छे वक्त की उम्मीद रखिए, एंजॉय कीजिए। पाकिस्तानी टीम पे भी मुंतबिक होता है ये शेर वैसे, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, अभी ज़िंदगी पड़ी है। टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह निगेबान। न्यूज़ ब्रेक भी अब आने वाला है आपका, मैं इसलिए जल्दी जाना चाह रहा हूँ, और साथ साथ इंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए जीए एफएम रेडियो नेटवर्क। अल्लाह निगेबान।

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है.
3: सुनते रहो GFM 90.8.
2: पहचो शहर पहचो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
3: GFM 90.8. सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा.
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
5: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंडअप में. सिंध राउंडअप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर.
6: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगे मां गुलाब खान भेण.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है.
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8.
3: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में. सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क पर.
4: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां उधो पिया जी एफ एम नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान बेण.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अजरक के रंगों से रंगी
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान बेणा।